छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गम ए दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 5:35 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है, फिर भी वो एक बार आसमान को छूना चाहती है। इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, बस समस्या यहाँ पर है कि इंसान अपनी जमीन को भूलकर हमेशा ही हवा में रहना चाहता है। 5:41 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

लेते रहिए मजा हर सफर का, मंजिलों पर पहुंचकर अक्सर कुछ खास नहीं मिलता, भटकते रहते हैं दिन रात मंजिलों की तलाश में, उम्र बीत जाती है पर खुशी का वो एहसास नहीं मिलता। बहुत जल्दबाजी ना दिखाइए मंजिलों पर पहुंचने के खातिर, बहुत जल्दबाजी ना दिखाइए मंजिलों पर पहुंचने के खातिर, जो मजा सफर का है वो मंजिलों पर पहुंचकर भी अक्सर नहीं मिलता। 5:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि के तदनुसार 11 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 6:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण।

6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। ठीक 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का और 7:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 का समय रहेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर होंगे उर्दू में समाचार, 8:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9:00 एक बार फिर से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 10:00 होंगे हिंदी में समाचार, 10:05 पर आप फिर से सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। 5:59 हो चुके हैं, ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के

0: निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi has said, aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace.
3: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
2: In his address, Mr. Modi said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-2026. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to media, Mr. Naveen said the NDA

गुरुवार की सुहानी सुबह में एफएम गोल्ड के साथ अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को संगीत के रूप में ढालते हैं और लेते हैं आनंद भक्ति संगीत का अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज साथ हूं मैं आपके बबीता।

जो व्यक्ति जितना कठिनाइयों से भागता है वो उतना ही अपने आप को निष्क्रिय बनाता है, और जो उन्हें जितना आमंत्रित करता है वो अपने आप को उतना ही योग्य बनाता है।

6:33 आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

भावनाओं से स्वच्छ हुए मन में विराजमान होने के लिए ईश्वर उसी प्रकार खींचा चला आता है जैसे सघन छाया के हरे भरे पेड़ के नीचे विश्राम पाने को थका हुआ पथिक आकर्षित होता है। आत्मिक पवित्रता ही रिद्धि सिद्धियों का स्रोत है। उपासना आवश्यक है और उपयोगी भी, पर उसका लाभ केवल उन्हें मिलता है जो अपनी मनोभूमि को सद्भावनाओं से और अपने शरीर को सत्कर्मों से पवित्र बनाते हैं।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदो उपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमंत्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमंत्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44.5 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिक दलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदनन्तरं संपूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमंत्री

0: मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मंत्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री

मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो चले 7:21 आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब लुत्फ उठाते हैं इस गीत का जो है फिल्म अभिमान से और गाया है किशोर कुमार ने।

हम अक्सर अपने बीते हुए कल को जीते हैं या भविष्य के सपने बुना करते हैं और इन दोनों में ये भूल जाते हैं कि हमारा ये जो पल अभी हमारे हाथ में है ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं, जी सकते हैं। अब देखिए ना, आज और अभी हम मुस्कुरा सकते हैं, अपनों को खुशियां दे सकते हैं, जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं क्योंकि आज का ये पल जब कल बन जाएगा तो इसे हम सिर्फ याद कर सकेंगे। इसलिए कल के बारे में सोचिए लेकिन आज को जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानिए।

0: न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। ये पंक्तियां हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिनके मन और तन दोनों समर्पित थे मां भारती को, और उन्हीं को नमन करेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है आज के आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है सभी श्रोताओं का, सभी मित्रों का, सभी साथियों का। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
1: गुड मॉर्निंग देवेंद्र। वी वेलकम लिसनर्स टू आवर थर्सडे मॉर्निंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। सो देवेंद्र, अ बिट ऑफ दिस, अ बिट ऑफ दैट, एंड वी आर गोइंग have a good time today, okay?
0: Jee.
1: So stay with us listeners and enjoy the program. So for starters, Devendra, let's give them some news headlines.
0: Jee. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे और सभी समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है।
1: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that it policies are correct and its direction is right. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest serving elected prime minister.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रिजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच हुई बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है, इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिरला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। ये देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से

0: Prime Minister Narendra Modi has praised the performances of Indian sportspersons and urged the nation to set ambitious targets for the Olympics. Speaking at the NDA conclave in New Delhi, Mr. Modi highlighted the achievements of young athletes and the rapid growth of sports in India, while stressing the need to aim higher on the global stage. Prime Minister said Indian youth are performing remarkably well in sports and their performances continue to improve with each passing day.
1: स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनके परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
2: संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद ने संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक जनजातीय कलाओं और कठपुतली सहित विभिन्न क्षेत्रों के 108 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना है। वहीं 106 युवा कलाकारों का चयन उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये की राशि, ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम प्रदान किया जाएगा। वहीं अकादमी रत्न के साथ 3,00,000 रुपए और अकादमी पुरस्कार के साथ 1,00,000 रुपए की सम्मान राशि, ताम्रपत्र तथा अंग वस्त्रम प्रदान किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे, जबकि युवा पुरस्कार अकादमी के अध्यक्ष द्वारा विशेष समारोह में दिए जाएंगे।
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Rumen Radev in Sofia yesterday. The External Affairs Minister highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership, and the imperative for closer bilateral cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed deepening collaboration in trade and investment, pharma, semiconductors, AI, space, defense, mobility, tourism and the creative entertainment industry. They also exchanged views on regional and global issues of mutual interest. Earlier in the day, Dr. Jaishankar visited the National Historical Museum in Sofia. He explored the museum's collection of artifacts spanning millennia and gained a deeper appreciation of how Bulgaria has preserved the many facets of its rich history and cultural heritage. Dr. Jaishankar will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta Talks. The talks will be held on the theme, A World in Transition, Global, Regional and Local Perspectives.
2: भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रेलवे स्टेशन आग जैसी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार रहें। मंत्रालय ने बताया कि ऑडिट में निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी आकलन किया जाएगा। निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पाई गई किसी भी कमी को तुरंत सुधारात्मक उपायों के माध्यम से दूर किया जाएगा। रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा और संरक्षा को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्नि सुरक्षा ऑडिट रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और आपातकालीन तैयारियों में सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। और सुभद्रा, सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, क्योंकि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बहुत होती हैं, तो ये दुर्घटनाएं न हो इसके लिए सभी को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: Canada has introduced legislation that could bar children under 16 from having social media accounts unless companies can prove their platforms are safe. The bill would require platforms to obtain exemptions by demonstrating adequate safeguards. The legislation targets 7 categories of harmful content, including material that encourages self-harm, incites violence or hatred, and non-consensual intimate images. It would establish a Digital Safety Commission of Canada.

0: Canada through exemption criteria will be announced later. Culture Minister Mark Miller said creating the regulator could take up to 18 months. Canada joins countries including Australia, Brazil and Indonesia in imposing or proposing age-based social media restrictions.
1: देश और दुनिया की इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम चलते हैं अपने महानगरों की ओर. जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या खबरें आपके पास हैं.
0: यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई. द तमिलनाडु लॉरी ओनर्स एसोसिएशन हैज रिजॉल्व्ड टू रेज फ्रेट रेट्स बाय 25% विद इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ जून, साइटिंग इंक्रीजिंग डीजल प्राइसेस. द डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय स्टेट प्रेसिडेंट सी धनराज आफ्टर एन एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग. ड्यूरिंग द मीटिंग मेंबर्स रिव्यूड कंसर्न्स सच एज द राइज इन diesel costs, freight tariffs, association subscriptions, and fines imposed on trucks found to be overloaded. Zoho Corp has built an indigenously designed and manufactured server platform as part of its plan to own the technology stack from hardware to end applications and reduce costs. The company designed key components including the motherboard, microcontrollers, data center secure control modules, network interface cards, firmware, and chassis assembled locally through Indian EMS partners. It was developed in collaboration with Intel India, tapping their capabilities and technical expertise. Moving to Bengaluru now, the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, under the Ministry of Science and Technology is hosting the RISE, RISE Conclave 2026 in Bengaluru with the theme Innovation and Entrepreneurship, Driven Growth for Viksit Bharat 2047. Organized by the CSIR and its laboratories, the two-day conclave will bring together over 800 delegates from academia, industry, startups, research institutions and government agencies. The event will focus on aerospace technologies, artificial intelligence and agri-food sector through panel discussions, keynote sessions and startup exhibitions. The Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka, in collaboration with IIIDEM, the Election Commission of India and International IDEA, organized an international stakeholder validation workshop on technology-driven voter registration, TDVR, in Bengaluru yesterday. The workshop reviewed findings from a global study covering 87 election management bodies across 6 continents, examining technology-enabled voter registration systems and identifying 5 major registration models. Moving to Hyderabad now, Telangana is set to guide the industrial development of the Republic of Ghana, particularly in establishing a major pharma hub. During a high-level meeting at the Dr. B.R. Ambedkar Telangana Secretariat, a Ghanaian delegation led by Presidential Advisor Augustus Obuadum Thano met with Telangana's IT and Industries Minister Rudila Sridhar Babu to discuss strengthening bilateral ties. The delegation sought Telangana's support for Ghana's economic transformation, highlighting their ambitious 24-hour economy and accelerated export development program. State Minister Sridhar Babu assured full cooperation, offering to share Telangana's world-class expertise in pharmaceutical manufacturing, vaccine production, research and global supply chain management. Devendra, let's hear from other metro cities.
1: जी, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली के पिंजरा पोल गौशाला में पूजा अर्चना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन तथा राष्ट्र गौरव के नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री को बिना किसी अवकाश के निरंतर राष्ट्र सेवा का अनूठा उदाहरण बताया. दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल लोक निवास में युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से आए 65 युवा प्रतिभागियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया. इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा किया गया. इस अवसर पर श्री संधू ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित युवा संगम देश की विविधता में एकता को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण को रूप देता है और युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी के 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से देश को निकटता से समझने का अवसर प्रदान करता है. दिल्ली नगर निगम और वैज्ञानिक

0: तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अनुमान तैयार करने, सड़क निर्माण और अभियंताओं की क्षमता बढ़ाने के काम को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन के अंतर्गत CSIR सड़कों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायता देगा। इस अवसर पर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि ये सहयोग सड़क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और दिल्ली के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी के एक मामले में सहकारी बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर एक फर्जी अकाउंट के संचालन में शामिल होने का आरोप है, जिसका संबंध देश भर में दर्ज 159 साइबर ठगी की शिकायतों से है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक खाते के जरिए करीब 67 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आगे की जांच जारी है। और रुक करते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई का, जहां महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराडे ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से प्रभावित फलों की बागवानी के नुकसान का आकलन जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित की जाए। बुधवार को मुंबई में एक बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि इस वर्ष मई और जून के दौरान 27 जिलों में 61,000 हेक्टेयर से अधिक भू क्षेत्र की खेती प्रभावित हुई है, जिसमें 18,000 हेक्टेयर से अधिक केले की खेती शामिल है। मंत्री ने बीमा कंपनियों से भी आग्रह किया कि वे बीमित और गैर बीमित दोनों किसानों को हुए नुकसान का सटीक आकलन करें, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन तकनीक का उपयोग भी शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि प्रभावित किसानों तक मुआवजा बिना किसी देरी के पहुंचाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने फसल बर्बादी और कर्ज के बोझ से दबे किसान परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राजस्व एवं वन विभाग ने एक सरकारी संकल्प जारी कर संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जिलेवार आवश्यकताओं के अनुसार इन निधियों का वितरण शीघ्रता से करें। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमरावती मंडल को सबसे अधिक 8,76,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद संभाजीनगर, नागपुर, नासिक, पुणे और कोंकण मंडल का स्थान है। इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाना है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को अधिकारियों को विभाजन के बाद सिंधी शरणार्थियों को आवंटित संपत्तियों के लिए माफी योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। योजना की समीक्षा करते हुए श्री बावनकुले ने पाया कि 15 मई को योजना समाप्त होने के बाद भी लगभग 85% आवेदन लंबित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासनिक देरी के कारण किसी भी पात्र लाभार्थी को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने शहर भर में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को QR कोड आधारित पहचान पत्र वितरित करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य फेरी लगाने की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाना और पंजीकृत विक्रेताओं की पहचान को आसान बनाना है। लगभग 99,000 पात्र स्ट्रीट वेंडरों में से अब तक लगभग 20,000 विक्रेताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। बुधवार को मुंबई की मेयर रितु तावड़े के कार्यालय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यमंत्री कार्यालय और बिहन मुंबई नगर निगम के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे जाने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बम डिटेक्शन दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से सभी स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और परिसर को सुरक्षित घोषित किया गया है। पुलिस ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने और भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू की है। साइबर विशेषज्ञ भी इस जांच में सहयोग करें, ताकि निर्धारित किया जा सके कि धमकी वास्तविक थी या फर्जी। आगे की जांच जारी है। कोलकाता चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने बुधवार को कोलकाता स्थित नबन्ना में पदभार ग्रहण किया और घोषणा की कि उनका प्राथमिक लक्ष्य करों में वृद्धि किए बिना राजस्व अर्जन को बढ़ावा देना है, ताकि राज्य के आर्थिक विकास को गति मिल सके। विभिन्न विभागों के सचिवों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य वर्तमान में राजस्व संग्रह के अपने मौजूदा स्रोतों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहा है और इन अप्रयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चूंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST अब राज्य के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए राज्य बजट तैयार करने में कुछ चुनौतियां हैं राज्य के समक्ष। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से विशेष भविष्य की योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महानगरों की खबरों के बाद बाद हाल मौसम का जान लेते हैं महानगरों का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंधी के साथ और बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। सुभद्रा, गर्मी बहुत है तो इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन शाम को दिन का तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहेगी। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा और सुबह काफी सुहाना मौसम रहा। मुंबई में आज आंशिक बादल छा सकते हैं और एक दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मुंबई में भी लोग मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं और समय भी हो चुका है मुंबई में मानसून के आने का। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 34 डिग्री रहने की संभावना है और कोलकाता में बारिश सुबह सुबह शुरू हो रही है और कुछ जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना कोलकाता के क्षेत्रों में रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा ऐसा अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
1: यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेंपरेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेंपरेचर was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 25 and maximum of 37 degrees Celsius. And Devendra, today, before we move forward, we talk about today. What is it today? International Day of Play is being observed today globally. Jee. This day marks a significant milestone, of course, in efforts to preserve, promote and prioritize playing so that all people, especially children, can reap the rewards and thrive to their full potential. And also, of course, they need to throw away their mobile phones and gaming devices and go out and enjoy, play games with their children and
0: mental
1: stuff.
0: Mental or physical of course, development very, ke liye
1: yes,
0: bahut
1: of course.
0: Hai
1: yes.
0: Physical activity ho. Aur uske yes. Khel sabse best madhyam hote hai.
1: Yes.
0: Jisme bachche sirf khelte nahi, apne aap ko fit nahi rakhte, balki enjoy karte hai.
1: Yes. Social connection is there. Mm-hmm. And this is also a chance, an opportunity for parents to join in fun, laughter, and spend some time educating their loved ones about spending time outdoors, bonding with kids, other kids, and also learn new activities other than their social work, their school work, I mean.
0: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खेलने बच्चों के लिए बाहर जाना चाहिए।
1: Yes, and moving on to the history section now. 1866, the Allahabad High Court was officially established, originally as the High Court of Judicature for the Northwestern Provinces at Agra. It was later shifted to Prayagraj, formerly Allahabad, in 1869, with its name officially changing to the High Court of Judicature at Allahabad on March 11 in 1919.
0: जी, और आज ही के दिन यानी 11 जून को 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी और 11 जून 1921 को ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था।
1: 1991, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज MS-DOS 5.0, a major operating system update that revolutionized early PC memory management and user friendliness. And 2002, the reality competition TV series American Idol debuted. It became one of the most watched shows in the United States.
0: जी, और इससे कुछ पहले चलते हैं तो वर्ष 1935 में आज ही के दिन एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार FM का प्रसारण किया था और 1940 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देश इटली ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और इटली की वायुसेना ने सबसे पहले माल्टा द्वीप पर इसी दिन हमला किया था।
1: एंड 2010 द 19th मेंस फीफा वर्ल्ड कप ओपन इन द होस्ट कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, मार्किंग द फर्स्ट टाइम दैट द टूर्नामेंट वाज प्लेड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट।
0: जी, और आगे बढ़ते हैं।
1: yes.
0: नमन और स्मरण उन महान विभूतियों का जिनके जीवन, जिनके विचार, जिनके कर्म आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। इस क्रम में जिस कविता का जिक्र मैंने आरंभ में किया था उसी को फिर से पढ़ना चाहूंगा। चाहूं मान दुनिया में न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वरदे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। लगे इस देश के ही अर्थ मेरे धर्म विद्या धन, करूं मैं प्राण तक अर्पण, यही प्रण सत्य है ठाना। नहीं कुछ गैर मुमकिन है, जो चाहो दिल से बिस्मिल तुम, उठा लो देश हाथों पर, न समझो अपना बेगाना। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर देश प्रेमी के दिलों में बस जाते हैं, ऐसा ही एक नाम राम प्रसाद बिस्मिल का है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 को जन्मे क्रांतिकारी बिस्मिल में एक संवेदनशील कवि भी था, जो बचपन से ही देश को आजाद होने का सपना देखता था। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़े तो उन्होंने कलम के साथ संघर्ष का रास्ता चुना और लिख दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों ने क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की चाह को और बढ़ा दिया था। जिन क्रांतिकारियों से विदेशी हुकूमत भयभीत रहती थी उनमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान जैसे वीर। इन्हीं वीरों ने

1925 में काकोरी ट्रेन लूटी, उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के संसाधन जुटाना था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने साहस और देशभक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दिया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई और ऐसे असंख्य राष्ट्र सेवियों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

0: भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपनी सेवा से समृद्ध किया। ऐसा ही एक नाम है के सदानंद हेगड़े का। उन्होंने न्यायपालिका, संसद और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। 11 जून 1909 को जन्मे के एस हेगड़े एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और समर्पित शिक्षाविद थे। उनका जीवन सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राज्यसभा सदस्य के रूप में की और 1957 में जब मैसूर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए तो उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और हम स्मरण कर रहे हैं मराठी साहित्य और इतिहास जगत के एक अनमोल रत्न वासुदेव वामन शास्त्री खरे का। वर्ष 1859 में जन्मे खरे इतिहासकार, एक संवेदनशील कवि, प्रतिभाशाली नाटककार और प्रेरक जीवनी लेखक थे। उन्होंने अपने लेखन से इतिहास को जीवंत बनाया और समाज को अपनी विरासत से जोड़ने का काम किया। 11 जून 1924 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके शब्द और विचार आज भी ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाते हैं।
1: Long time drummer of ZZ Top, Boogie Blues rock band from Texas, Frank Beer celebrates his birthday today. Frank was formerly with the Cellar Dwellers, the Hustlers, the Warlocks and the American Blues bands before starting to perform and record with Billy Gibbons and Dusty Hill as ZZ Top. Here goes. Happy birthday, Frank.

0: लंबी दूरी के भारतीय तैराक मिहिर सेन को भी हम नमन कर रहे हैं। वो 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले पहले भारतीय थे और चौथे सबसे तेज तैराक बने जिन्होंने उपलब्धि 14 घंटे 45 मिनट में हासिल की। वो एक कैलेंडर वर्ष 1966 में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और इन्हीं महान विभूतियों को नमन करते हुए अब आपसे चाहेंगे आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
0: नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक gov.in
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025

0: 2026 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार

0: international cooperation to de-risk and diversify in an increasingly volatile world. He will visit Finland today to attend the 14th edition of the Kultaranta talks. The U.S. military launched another round of strikes on multiple targets in Iran yesterday, saying the attacks were in response to Iran's continued aggression as tensions escalated in West Asia despite efforts to revive negotiations to end the war. The second day of American strikes came hours after Iran launched attacks toward Bahrain, Kuwait and Jordan, which host U.S. troops. Iranian media also reported explosions in Bandar Abbas, Sirik, Minab and Keshem Island in the south of the country. Prime Minister Narendra Modi has praised the performances of Indian sportspersons and urged the nation to set ambitious targets for the Olympics. Speaking at the NDA conclave in New Delhi, Mr. Modi highlighted the achievements of young athletes and the rapid growth of sports in India while stressing the need to aim higher on the global stage.
1: Bharat duniya ki biggest sports league ki dharti banta ja raha hai. Aane wale saalon mein hamari ye khati aur buland hogi. ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है. हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है.
0: The world's biggest football tournament 2026 FIFA World Cup begins today and will run through July 19th across the United States, Canada and Mexico. The tournament is the largest in World Cup history, featuring 48 teams compared with 32 teams in previous editions. In this edition, a record 104 matches will be played, including 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds. The final is scheduled for July 19th. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahi, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh and Karnataka, Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Tamil Nadu and Northeast India. Thunderstorms are also likely to occur today over Bihar, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Shagun. All the dailies lead with PM Modi becoming the longest serving elected Prime Minister and congratulatory wishes pouring in from around the world for this historic milestone in the journeys of Indian democracy. Modi 12.0 One Vision Nation First. In a document titled Nation First, the core mantra issued to mark 12 years of the current government. The center emphasized its vision of Rashtra Pratham and asserted that it is no longer just the sentiment, but the lifeblood of India leads the pioneer. For the first time in its dealings with the Trump administration, India summoned a top U.S. diplomat in New Delhi following an attack earlier in the day by American forces on a commercial ship off the coast of Oman, cites the Indian Express under the headline, Three Indians Missing After Attack, Delhi Summons U.S. Diplomat. Army Chief General Upendra Dwivedi reviews the operational readiness of troops, reports the Asian Age, announcing the first built-to-suit data center capacity in India for Meta, the Financial Express mentions. Reliance Meta deepened ties with AI data center deal. Pact highlights new infra model for AI build-out. The Times of India in its editorial piece titled Control Shift, AI is not destroying the job market but changing it. There will be jobs aplenty if you update your skills. In white-collar circle, this is the best of times. And finally, human contribution to global warming, highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. U.S. military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल, जेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वजीर आजम के नजरिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंजर के कतई नजर हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नजरिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान चार बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरखोज करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोजगार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद, नीज सबके लिए मुसावात और वक़ार शामिल हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
4: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तिमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नज़रिए के साथ रियासतों के नज़रियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तिमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी, जो पिछले साल दिसंबर के अवाखिर में हुई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकबीयत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाकई भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज़ रफ्तार से होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और ये सही समत में गामजन हैं।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25

0: लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दोचार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क 5 कमजोर मईशतों के जुमरे से निकल चुका है और अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है।
0: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है।
1: ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकरर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अनथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामनिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संग मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वजीर आजम के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
3: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
2: हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज़ अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
4: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरीज करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीजों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीजें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से

0: ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है, जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मस्कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा NDA कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
3: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
2: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरीन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान की मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुज़ाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज़ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि ज़मीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
2: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंडिया सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुरबत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल के ज़ेले हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने

आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब वक्त है म्यूजिकल दिल लगी का। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं आज के सुरीले सफर पर। और आज साथ हूं मैं आपके बबिता। नमस्कार।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों

0: एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: वक्त तो चला है 8:55 और 3 सेकंड। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। आज 11 जून और 11 जून का इतिहास भारत और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। आज के दिन 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। और आज के दिन 1897 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि और काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। और इसके साथ ही आज के दिन 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नव निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। बरकरार रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ और आइए अब सुनते हैं तेरी कसम फिल्म का ये गीत अमित कुमार की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की और ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि एनडीए सम्मेलन में श्री मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में

पुरानी हवा चल रही है ना, दो दिन से तो हम इतने परेशान थे, खासतौर पर कल जो गर्मी थी वो तो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और हम सब दुआ मांग रहे थे कि बस किसी भी तरह से मौसम बदल जाए। तो शायद ऊपर वाले ने सुन ली है और हवा तो चली रही है, बीच बीच में बादल भी लहरा के घने घने आ रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप नीतू के साथ हैं और ये है म्यूजिकल दिल लगी, और समझ लीजिए आपकी दुआ पूरी होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे देखकर, शायद आपको भी लग रहा होगा।

ऐसा कहाँ होता है कि आपको जो मिल गया है उसके बाद आपको कुछ और मिले ना मिले उसका गिला ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं। हम लोगों को एक चीज मिल जाती है तो हम दूसरी चीज के लिए ना दीवाने हुए पड़ते हैं। अब जबकि छुट्टियां आ गई है, छुट्टियों के बहुत सारे लोगों को एक इंतजार रहता है क्योंकि टाइम नहीं होता ना लोगों के पास, तो छुट्टियों में वो टाइम मिलता है। और जब ये टाइम मिल जाता है तो फिर एक और इच्छा आ जाती है कि अरे कहीं घूमने चला जाए। और चलिए आप सब घूमने निकल ही गए हैं तो एक चीज़ की जानकारी भी ले लीजिए कि अगर आप घूमने जा रहे हैं और आपने पहले से बुकिंग नहीं कराई है, ट्रेन की कन्फर्म टिकट्स नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पर टिकट्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो या तो आप RAC के साथ ट्रेवल करते हैं या वेटिंग टिकट के साथ, पर

हालात में सफ़र करना ना वो इंग्लिश वाला सफ़र हो जाता है, लेकिन अब ट्रेन में TTE को HHT डिवाइस दे दी गई है, जिसमें उसके अपडेट होते ही ना आप चलती ट्रेन में भी सुविधा अनुसार टिकट बुक करा सकेंगे और आपका सफ़र आसानी से पूरा हो जाएगा।

अभी तो हम ये सब ना बारिश को कह रहे हैं कि भाई चली यार चली यार, क्योंकि दिल्ली में जिस जो हालात है ना उनमें तो बारिश होना अब बहुत जरूरी हो गया है। जल्दी से बारिश हो जाए, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए तो हम सबका कम से कम एक दो दिन तो हमारे अच्छे गुजरे। खैर खाने पीने की अगर हम बात करें, क्योंकि खाने पीने के बिना तो हमारा गुजारा नहीं चलता ना, अगर आप घूमने भी जाते हैं तो खाना पीना तो चाहिए ही होता है, और अगर आप शौकीन हैं यानी कि आप फूडी हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। दुनिया भर के 150 शहरों पर एक अध्ययन किया गया और जो रिपोर्ट आई है उसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों, आधुनिक कैफे, स्ट्रीट फूड्स और वैश्विक खान पान की वजह से बेंगलुरु को मिला है 13वां स्थान। तो जब भी आप घूमने फिरने की प्लानिंग करें तो अपनी लिस्ट में बेंगलुरु को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बिना अच्छे भोजन के घूमने का मजा बिल्कुल नहीं आता है, कि वो भूखे पेट आप कैसे घूमेंगे, मजा ही नहीं आएगा आपको। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूं नीतू।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

आजकल आप बच्चों को देखें ना, तो खेलने का टाइम जरा उनके पास कम होता है, क्योंकि जितना टाइम बचता है ना, वो मोबाइल और टीवी देखने में बिता देते हैं। ज्यादातर तो मोबाइल में ही रहते हैं, बड़ों की तरह ना उन्हें भी रील्स घुमाने में जो है वो मजा आता है, रील्स एक के बाद एक स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन बच्चों को मानसिक और उनका शारीरिक विकास तभी होगा जब वो थोड़े से ऐसे गेम्स खेलेंगे जो कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे और समस्या सुलझाने या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जो स्किल्स हैं उनको विकसित करेंगे। और ऐसे गेम्स ये वही होते हैं जो रियल गेम्स हम लोगों ने अपने बचपन में खेले हैं, मैदान में जाकर, पार्क में जाकर तरह तरह के गेम्स खेलना। और इसीलिए मनाया जाता है हर साल 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ताकि हम सभी, ना सिर्फ बच्चे बल्कि हम सभी अपनी जिंदगी में खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को समझें। और क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और पता है खेलने की सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक टीम स्पिरिट बढ़ती है। आप हारते भी हैं ना तो आपको हार एक्सेप्ट करना आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में ना हम हमेशा जीत नहीं सकते, हारते भी हैं, पर बहुत सारे लोग हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, दोबारा से हारने के बाद फिर से उठ खड़े होना भी गेम का ही एक हिस्सा होता है। तो आज के दिन को आप मनाइए, कुछ ना कुछ गेम खेलकर मनाइए। मैं तो गाने सुनाकर ही मना सकती हूँ, तो मैं गाने सुनवा रही हूँ आपको। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल्ली की।

क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता चलता। कई बार इंसान का शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है और उसका शरीर खोखला हो जाता है उन बीमारियों के कारण। और गंभीर बीमारी हो तो कई बार आर्थिक कारणों से इलाज कराना भी मुश्किल हो जाता है। गरीब और वंचित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत वंचित गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सके। चलिए, शरीर की बीमारियों का तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां अलग सी होती हैं और उन अलग सी बीमारियों के लिए कोई इलाज होता है या नहीं ये कहना ही ज़रा मुश्किल है। पर हाँ, इस गाने में ज़रा आप उस बीमारी के बारे में जान सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गाना।

ये जो किसी को बुलाने का जो एक आवाज देकर पुकारने वाली बात है ना, ये ज्यादातर उन लोगों में बहुत देखी जा रही है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अकेले रह रहे हैं, परिवार के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों में ना अकेलेपन की भावना और दुनिया से कटे होने की भावना बढ़ रही है। अब आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनमें अकेलापन, तनाव और चिड़चिड़ापन की जो शिकायतें हैं ना, वो बढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए, आप घर में भी काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा तो महसूस होता ही है ना कि आप समाज से कटे हुए हैं। आप बाहर निकलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं, तो आपका एक माइंड भी खुलता है, आपको एक एक्सपोजर भी मिलता है। और अब घर में आप वही अपने आप से जूझ रहे होते हैं, फिर वही घर के 4 लोग जिनमें से कभी कभी आपकी लड़ाई भी हो जाती है, गुस्सा भी आता है। बाहर निकलते हैं ना तो वो गुस्सा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और घर आकर आप वापस नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं। इसीलिए वर्क फ्रॉम होम को बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वर्क फ्रॉम होम भी पसंद है।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: वही बेकरारी उधर किस लिए है वही बेकरारी उधर।
1: मोहब्बत ना किसी भी चीज से हो या इंसान से हो या फिर अपने देश से हो, मोहब्बत मोहब्बत है और उसमें यही हाल होता है। और जिन्होंने अपने देश से प्यार किया, अपने देश के लिए जान गंवाई, ऐसे ही एक शहीद को आज हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ये स्वतंत्रता के लिए सभी तरह सभी लोग जो थे वो अपनी तरह से प्रयास कर रहे थे और काकोरी कांड उन्हीं प्रयासों में

एक अहम घटना थी। इससे ब्रिटिश सरकार को झटका लगा और उन सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी गई जो इस घटना में शामिल थे। बहुत से लोगों को पकड़ा गया, कुछ को काला पानी की सजा सुनाई गई, कुछ को 4 से 14 साल तक की कैद। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और फिर उन्हें 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। जिन दिनों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके साथी काकोरी कांड में जेल में बंद थे, उन दिनों अपने साथियों के कहने पर उन्होंने एक गीत की रचना की थी जो कि शहीद भगत सिंह की लगभग हर फिल्म में आपको सुनाई देता है। मुखड़ा हर फिल्म में सेम है, पर अंतरों में हर गीतकार ने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो वही गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, आप इस गीत का आनंद उठाइए। और नीतू को इजाजत दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ दिल का मेल बॉक्स में।

0: उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाईटवर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा.
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़. इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में. सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा.
2: प्रधानमंत्री

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाईटवर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा.
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़. इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में. सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा.
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: प्रमोद राऊत यांनी, त्याचप्रमाणे सुनीता व्यवहारे यांनी कार्यक्रम आवडल्याच्या प्रतिक्रिया दूरध्वनीच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या. त्यांचे मनपूर्वक आभार.

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, center and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the center and states will play a pivotal role in realizing the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati.

आप सभी का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 1:11:04 हुए हैं और इस वक्त कलाकार बेमिसाल में भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर सत्येन बोस, जिन्होंने सिनेमा को कई बेहतरीन अतुलनीय फिल्में दी। अनेक भाषाओं में उन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया। सिनेमा की दुनिया में सत्येन बोस ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से अपनी एक अलग पहचान कायम की। फिल्मों के माध्यम से समाज को संदेश देने का उनका तरीका निराला और अनोखा रहा। बिना ट्रेनिंग उनकी पहली फिल्म और अचानक मिली शोहरत, ना कोई स्कूल ना कोई गॉडफादर, फिर भी फिल्म दर्शकों और समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म ने सत्येन बोस ने अभिनय भी किया था। इस फिल्म की सफलता ने ये साबित कर दिया कि सिनेमा की समझ किताबों से नहीं संवेदनाओं से आती है। परिवर्तन यानी परिवर्तन सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि पूरे उनके करियर की नींव रही, जिसने उन्होंने बंगाली

0: फिल्मों का निर्देशन उनके द्वारा किया गया। 22 जनवरी 1916 को जन्म हुआ सत्येन बोस का कोलकाता में। 1941 में विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि इन्होंने हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही कला के प्रति नाटकों की तरफ इनका जरा रुझान रहा। इसके बाद जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो कुछ वक्त तक रेलवे और बैंक की नौकरी भी इन्होंने की। जाहिर सी बात है, ज्यादा समय तक वो इन नौकरियों में नहीं रहे और जल्दी ही फिल्मी दुनिया की तरफ इन्होंने रुख किया। इनके निर्देशक एक बेहतरीन फिल्म दोस्ती का गीत आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यन बोस, जिनके बारे में बातें साझा हो रही है इस वक्त आकाशवाणी गोल्ड पर 100.1। हिंदी और बंगाली, खासकर इन दोनों भाषाओं की

महान डायरेक्टर सत्येन बोस हिंदी और बंगाली सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में रहे जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के अपने जुनून और समझ से सिनेमा को एक नई दिशा दी। रेलवे और बैंक में नौकरी करने वाले इस युवक ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारतीय सिनेमा को अमूल्य फिल्मों का वो खजाना सौंपेंगे जिन पर दशकों बाद भी चर्चा होगी। कॉलेज के दिनों में थिएटर का उनका जो जुनून था उसी ने उनमें कहानी कहने की अलख जगाई जो आगे चलकर पर्दे पर दिखाई दी। ये वो दौर रहा जब सिनेमा में आने का कोई तय रास्ता नहीं था, लेकिन सत्येन बोस ने अपने लिए रास्ता खुद बनाया। शांत स्वभाव के सत्येन बोस फिल्मी लाइमलाइट से थोड़ा दूर ही रहे। काम के प्रति ईमानदारी उनके स्वभाव का एक हिस्सा रही। ऐसे महान व्यक्तित्व सत्येन बोस को हम हमेशा ऐसे ही याद करते रहेंगे। फिर कभी उनके बारे में और ढेर सारी बातें साझा होंगी और उनकी निर्देशित बेहतरीन फिल्मों के गीत पहुंचेंगे आप तक। इसी के साथ चलते चलते एक बहुत ही उनकी निर्देशित फिल्म का बहुत ही जैसे बोलते हैं मेलेडियस कर्ण प्रिय सा गीत आंसू बन गए फूल, इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक। आवाजें हैं आशा भोसले किशोर कुमार की और अंजलि इसी के साथ आपसे ले रही है इजाजत। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खितों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारी ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। और आज रात मैक्सिको में शुरू होने वाले एक महीना तवील फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दा तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी में इजाफा करने और रोजगार के मौके पैदा करने के इकदामात पर गौर खोज किया जाएगा। तबादला ख्याल के दौरान इज्तिमाई तौर पर अमलावरी का खाका तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, ताकि जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए हुक्मरानी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और साझेदारी को फाल बनाया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तआवुन पर मबनी वफाकी निज़ाम के जज्बे से रहनुमाई हासिल करते हुए मरकज और रियासतें भारत की तरक्की के सफर में तेज़ी लाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के मुश्तरक विजन की तकमील में अहम किरदार अदा करेंगी। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए सबकी शमूलियत वाली इंसानी तरक्की, जिसमें उम्र, खित्ते, जिंस या समाजी व इक्तसादी पस मंज़र से क़त नज़र हर शहरी की फलाह व बहबूद और तरक्की पर जोर दिया गया है। गवर्निंग काउंसिल इस विज़न को पाए तकमील तक पहुंचाने की हिकमत अमली और इसे मुल्क भर के शहरियों के लिए एक ठोस नतीजे में बदलने पर गौर करेगी। रेलवे और इत्तिलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के आकाशवाणी अहाते में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के रामगढ़ में नसब 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। तकरीब में जयपुर के रुकन पार्लियामेंट मनोज शर्मा, प्रसार भारती चेयरमैन प्रसून जोशी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णव ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरहदी खित्तों में मवासिलात को मुस्तहकम करने के तहीं हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों का अहाता करने की बड़ी पहल आज राजस्थान में शुरू हुई है। जनाब वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से शुरू करते हुए मुल्क की पूरी सरहदी पट्टी को जामे कवरेज फराहम करने का मंसूबा है। हुकूमत ने इथेनॉल की आमेजिश वाले बाज अकसाम के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि इस कदम का मकसद भारत के इथेनॉल की आमेजिश के प्रोग्राम को मुस्तहकम करना है, ताकि दरामद किए जाने वाले खाम तेल पर इन्हिसार कम हो, कार्बन के अखराज में कमी आए और मुल्क में तैयार करदा इथेनॉल की मांग में इजाफा किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सदरनशीन सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी आबादी के वजीर राम मोहन नायडू ने आज गुजरात में वडोदरा से भारत में तैयार की गई पहली एयरबस C295 की पहली आजमाइशी परवाज पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा
कि यह आसमान में उड़ने वाला महज एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इससे हवाई जहाज़ों की तैयारी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का भी इजहार होता है। शहरी आबादी के वजीर ने इस कामयाबी पर एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय फिजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अदीब और कंसल्टेंसी फर्म काउंसिलेज इंडिया के बानी और मैनेजिंग पार्टनर का मजमून शेयर किया है। ये मजमून वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दतकार का अहाता करता है और इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने मुश्किल रास्ते को चुना और हुक्मरानी के तरीक़ेकार के ज़रिए बदलाव लाते हुए वक़ार और खिदमात की फराहमी को अवामी तहरीक बना दिया। ये मजमून इस बात को भी नुमाया करता है कि जनाब मोदी ज़्यादा बाअसर वजीर आजम साबित हुए और वो बदलाव लाने वाले शख्स बने जिसकी भारत को सख्त ज़रूरत थी। भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोबगे ने आज कौमी रोजनामे में एक मजमून लिखा जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी गई। अपने मजमून में भूटान के वजीर आजम ने वजीर आजम मोदी को काबिल एतबार दोस्त, बड़ा भाई और रहबर करार दिया। जनाब टोबगे ने 26 मई 2014 को जनाब मोदी की हलफबरदारी की तकरीब के दौरान उनसे हुई मुलाकात को याद किया और वजीर आजम के पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत की जानिब से भूटान को चुने जाने की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब टोबगे ने जोर देकर कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में गहरे होते दोतरफा ताल्लुकात के दौरान भारत भूटान का सबसे करीब तरीन दोस्त और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी बना रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मारूफ फिल्म साज भारती राजा के इंतकाल पर आज अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारती राजा सिनेमा की दुनिया की कद्दावर शख्सियत थे जिनके काम ने तमिल सिनेमा को बदल कर रख दिया। वजीर आजम ने कहा कि फिल्म साज भारती राजा की जानिब से पेश की गई देही जिंदगी को खूब सराहा गया। वजीर आजम ने भारती राजा के अफराद खानदान और मद्दाहों से ताजियत का इजहार किया है। हुकूमत ने उस जाली वीडियो की तर्दीद की है जिसमें भारतीय फिजाइया के तैयारे के पाकिस्तान सरहद के करीब तबाह होने का दावा किया गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की हकायक की जांच करने वाली इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और इस वीडियो को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स की जानिब से फैलाया जा रहा है। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई ख़त्म करने के लिए मुजाकिरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाज़ों समेत हर तरह के जहाज़ों के लिए आबनाए हुरमुज़ के बंद होने का ऐलान किया है, जबकि अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ बदस्तूर आबनाए हुरमुज़ से गुजर

0: रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कल आबनाए हुरमुज में दो बहरी जहाजों को निशाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात मैक्सिको सिटी में तारीखी स्टेडियो अजटेका के मकाम पर शुरू हो रहा है और जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि साबिका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थीं। इस टूर्नामेंट में चार चार टीमों के 12 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से चोटी की दो टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच जाएंगी। इस टूर्नामेंट में ग्रुप मरहले में 72 मैचों समेत मजमूई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड का फाइनल 19 जुलाई को होगा। स्पोर्ट डेस्क से शगुन चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: इस दौरान फीफा आलमी कप में पहला मैच ग्रुप ए में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खितों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। TMC रुकने पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C-295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says government making efforts to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP Prakash Chikwaraik resigns from Rajya Sabha. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. Iran announces closure of Strait of Hormuz following US strikes. And sports fans across the globe await month-long football spectacle as FIFA World Cup kicks off in Mexico City tonight. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. The Prime Minister said women-led development is a cornerstone of the vision of Vikasit Bharat. He said, from farming and startups to science and innovation, Nari Shakti is contributing across the domains. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Vikasit Bharat at 2047. The meeting has brought together chief ministers and lieutenant governors from across the country to discuss the inclusive

0: scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only 8 nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France, and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached 3 finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

0: श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाउ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज MT सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन

0: हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि

0: कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र, अस्मिता वाहिनी, दुपार से 2:30 वाजलेले आहेत। प्रणव कुमार बिश्वास यांचं शास्त्रीय गायन आपण ऐकणार आहोत। राग भीमपलास त्यांनी गायलेला आहे। विलंबित बंदिश एक तालामध्ये बोल आहेत। अब तो बड़ी भेर भई। द्रुत बंदिश 3 तालात बोल आहेत। जा जा रे यांना तबला साथ प्रसून चटर्जी यांची, हार्मोनियम साथ विनोद पडगे, सारंगी साथ उस्ताद फारूक लतीफ खान यांची। ऐकूया प्रणव कुमार बिश्वास यांचं शास्त्रीय गायन, राग भीमपलास।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड अने न्यूज ऑन AIR आ मोबाइल एप पर एकदम खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने आजे आपनी साथे छे तरुलता करोडिया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोडिया ना सस्नेह नमस्कार।

हे हुतु तु तु तु। हाँ मित्रों, आजे छे आंतरराष्ट्रीय रमत दिवस अने आजना कार्यक्रम में आपणे एवी रमतोनी वात करवी छे जेमां कोई पण बीजा साधन के वस्तुनी जरूर ना पड़े, फक्त तमे तमारा मित्रों तमारा परिवारजनों कुटुंबीजनों बस आटला ज लोकों में जे रमत रमाय ए रमत जेमा कोई पण वस्तु तमारे बारथी खरीदवानी नथी, साथे लावानी नथी, लई नथी जवानी, कोई पण साधन उचकवानो नथी। चलो शुरुआत करिए लंगड़ी थी। लंगड़ी बधा ज रम्या छे, बराबर ने? आपणी सौथी जूनी अने परंपरागत रमत एटले लंगड़ीनी रमत। दक्षिण एशिया अने भारतमां, खास करीने दक्षिण भारतमां आ रमत सौथी पहली वार रमाई हती अने त्या एनु नाम छे नोंध्याटम। मित्रों, आ रमत मा एक पगे कूदता कूदता तमारे जे बीजा खिलाड़ीओ छे एने स्पर्श करवानो होय छे। आम तो आ रमत एटले पकड़दाव अने एक पगे कूदवो एटले के लंगड़ी, ए बन्नेनुं मिश्रण कही शके तो चाले। शारीरिक संतुलन तमारुं वधारे, तमारामां चपळता वधारे अने त्वरित तमे प्रतिक्रिया आपी शको एना माटे मददरूप थाय एटले आ रमत। 1935 अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडळे आ रमत माटेना नियमो बनाव्या के 15 मीटर चोरस के लंबचोरस मैदानमां ज आ रमत रमाय, 12 ખેલાડીઓ ઓછામાં ઓછા હોવા જોઈએ આ રમતમાં, પરંતુ જ્યારે રમત રમાય ને ત્યારે માત્ર 6-9 લોકો હોવા જોઈએ। જ્યારે પગે કૂદતા કૂદતા બીજા ખેલાડીઓને સ્પર્શ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અને તમે કોઈને સ્પર્શ કરી લો છો તો એ વ્યક્તિ આઉટ થઈ જાય છે। 4 ઇનિંગમાં આ રમત રમાય છે અને દરેક ઇનિંગ 9 મિનિટની હોય છે અને મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ પણ પોતાના શિક્ષણમાં આ રમતને દાખલ કરી છે। હવે આપ મને જણાવો કે આપ એવી કઈ કઈ રમતો રમો છો કે રમતા હતા જેમાં કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ સાધનની જરૂર ના પડે, માત્ર તમે અને બીજા ખેલાડીઓ। નંબર 0224515414, 0224515414।

संख्या बोली जाए तो ये आउट थाय, अने बे की संख्या बोलवानी होय अने कोई एक ही संख्या बोली जाए तो ये आउट थाय। मोर उड़े, पोपट उड़े, चकली उड़े, पतंग उड़े, विमान उड़े, हाथी उड़े। कई याद आव्यु? रम्या छो क्यारेक? मित्रों आ पण रमत छे, अने आ रमत में एटली ज मजा आवे छे। बीजी एक रमतनुं नाम छे हाथ साकड़ी। एटले हाथ साकड़ी रमत पण खूब जूनी रमत छे, अने एक रमत छे चोर पोलीस। आ चोर पोलीस रमत में पण एटली ज मजा आवे छे। एटले मित्रों जो आ रमतो पण आप रम्या होय ने आ रमतो विषे पण आपनी पासे माहिती होय तो आप मने जणावी शको छो। नंबर छे 0224515134, 0224515134135। અને હા, અત્યારે મેં એક અભિનય કરીને ફિલ્મના ગીતો ઓળખવાની રમતનું જે વાત કરી હતી એના માટે અમારા હર્ષાબેન મહેતા, પૂજા પાઠક અને વિભાબેન મહેશ્વરી ભરત ખોના એમના ફોન આવ્યા અને એમણે એ રમતનું નામ કહ્યું ડમ શેરાજ।

आ रमत विषे पण तमे जो कई जाणता हो ने तो मने फोन करो। हवे समय तो खूब ओछो छे, परंतु जो तमे रम्या हो तो फोन करजो। नंबर छे 0224515413, 0224515413।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। बैठक में देश भर के उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार की स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। उन्होंने कहा कि आयोग विकास के प्रत्येक पहलू में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश को तैयार करने के सरकार के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने के प्रयास कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका

जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेड़ नेचर हमारी ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफा है जो कि हमें कुदरत ने दिया है, और इसी के तहत, इसी के चलते हरित क्रांति में CISF का योगदान पिछले 6 वर्षों से देश भर में 44 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का है। और नई दिल्ली जून 2026 पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच बल द्वारा कुल 44,08,341 पौधों का रोपण किया गया, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित, जो उन्होंने निर्धारित किया था 35,70,000 पौधों के संचय लक्ष्य से भी कहीं ज़्यादा था। और CISF ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनसे आगे बढ़कर प्रदर्शन करने का जो उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाए रखा है, पिछले 6 वर्षों के दौरान बल ने निरंतर निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा पौधारोपण किया है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उपलब्धि देश में हरित आवरण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों में CISF की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। और ये व्यापक वृक्षारोपण अभियान भारत सरकार के अधिक आवरण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव होते हैं उसको कम करने की के नज़रिए से CISF की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश भर की CISF इकाइयों ने वर्ष दर वर्ष वृक्षारोपण और वनीकरण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष जो है निर्धारित लक्ष्यों से भी ज़्यादा पौधारोपण किया जाता है, और ये वाकई में काबिले तारीफ है। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ये गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: $37,000 plus HRA, while junior research fellows will be paid $37,000 plus HRA per month. The engagement period is initially for 2 to 3 years. Extendable based on performance and institutional requirements. Interested candidates can find detailed eligibility criteria, educational qualifications and application procedures on the laboratory's official website. The last date for submission of online applications is 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.ndtlindia.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सक्रिय नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रिंसिपल टीम लीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, लीड कंसल्टेंट नॉलेज मैनेजमेंट डिवीजन, कंसल्टेंट रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्राइमरी केयर, कंसल्टेंट AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी इन प्राइमरी हेल्थ केयर, कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन यूनिट, कंसल्टेंट ड्रग्स एंड लॉजिस्टिक्स तथा कंसल्टेंट क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। इन सभी पदों के लिए रिक्तियों की संख्या एक है। प्रिंसिपल टीम लीड के लिए आयु सीमा 62 वर्ष या उससे कम है, जबकि अन्य सभी पदों के लिए 45 वर्ष अथवा उससे कम के उम्मीदवार अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org। इसके अलावा www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर भी ये जानकारियां उपलब्ध हैं। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 16 जून 2026। दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र गोरखपुर में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए सहायक प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सहायक प्रोफेसर विशेष शिक्षा, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रशासनिक अधिकारी क्लिनिकल सहायक, स्पीच थेरेपिस्ट क्लिनिकल सहायक, डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षा OM इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप सुपरवाइजर, लिपिक टंकक। इन सभी पदों पर एक एक रिक्ति उपलब्ध है, किंतु विशेष शिक्षा OM इंस्ट्रक्टर के लिए 2 रिक्तियों की संख्या मौजूद है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशित होने से 21 दिन के भीतर रहेगी। ये जानकारी 6 से 12 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। आवेदन इस पते पर भेजना होगा, दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र गोरखपुर, BRD मेडिकल कॉलेज परिसर, 33 KVA सब स्टेशन के सामने, गोरखपुर। ईमेल का पता रहेगा crcgkpr@gmail.com। क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप भारत की महारत्न कंपनी से जुड़ सकें? भारत औद्योगिक और ऊर्जा विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और BPCL नवाचार परिवर्तन और व्यवसाय विस्तार के साथ लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये कंपनी ऐसे अनुभवी और योग्य पेशेवरों की तलाश में है जो देश के भविष्य के निर्माण में BPCL के साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। आवेदन आरंभ हो चुके हैं और विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bharatpetroleum.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की खबरें बताएंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, इसके अलावा खेल जगत और आर्थिक जगत पर क्या हलचल है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत कुछ रहेगा आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
3: हेलो प्रियंका, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ परिक्रमा। And yes, Priyanka has already told you कि क्या कुछ होने वाला है। हसबे दस्तूर लाएंगे आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, but because the name of the show is Parikrama, so that means we'll do the Parikrama of the country. We'll go to different corners of our country and see what interesting stories our correspondents have from there. All of that in the next half an hour, but first let's start with the headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi.
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया।
3: सेंटर वेव्स एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन वेरियंट्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया।
3: फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट कंप्लीट्स मेडन टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम वडोदरा।
0: अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की।
3: एंड स्पोर्ट्स फैंस अक्रॉस द ग्लोब अवेट मंथ लॉन्ग फुटबॉल स्पेक्टिकल एज फीफा वर्ल्ड कप किक्स ऑफ इन मेक्सिको सिटी टुनाइट। And now it's time for Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. Today we're going to talk about International Day of Play and of course the FIFA World Cup.

0: Yes, today we are celebrating something that brings smiles, energy and happiness to people of all ages, the International Day of Play.
1: बिल्कुल, और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस चीज़ पर जोर देता है जिसे हम अक्सर मामूली समझते हैं, और वो है खेलने की ताकत। चाहे पार्क में क्रिकेट खेलना हो, लुका छुपी का खेल हो, परिवार के साथ बोर्ड गेम्स खेलना हो, या बस दोस्तों के साथ मजा करना हो, खेलना हमारी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: एब्सोल्युटली प्रियंका, इनफैक्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व्ड ऑन 11th जून वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिमाइंड अस दैट Play is not just entertainment. It's essential for healthy growth, learning and overall well-being.
1: सही बात है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का विषय है खेल को बचाएं, बचपन को बचाएं। ये संदेश इस बात पर जोर देता है कि आज़ाद और बिना किसी नियम कायदे वाले खेल के मौके कम होते जा रहे हैं, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में। और साथ ही सरकारों और परिवारों को ये याद दिलाता है कि स्वस्थ विकास के लिए खेलना कितना जरूरी है, और यहाँ तक कह सकते हैं कि बुनियादी अधिकार है।
0: Absolutely, Priyanka. And of course, when we hear the word play, many of us immediately think of children. But honestly, who says that adults can't play as well?
1: बिल्कुल बिल्कुल, चाहे बैडमिंटन का दोस्ताना मैच हो या फिर डांसिंग, खेलने की कोई उम्र नहीं होती, कोई तरीका नहीं होता।
0: कोई तरीका होना भी नहीं चाहिए, खेल का पूरा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको मजा आए, आपके यू नो डोपामाइन से रिलीज हो, ऑक्सीटोसिन
1: ऊर्जा पैदा हो, और आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाए।
0: एब्सोल्युटली प्रियंका, एंड आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फेवरेट चाइल्डहुड गेम?
1: खेल देखा जाए तो खो खो खेलते थे हम लोग जब बचपन में, आंख में चौली खेलते थे, तो वो चीज़ें अब भी याद रहती हैं जो शायद आज के जो बच्चे हैं, आज की जो उम्र के बच्चे हैं, वो भूलते जा रहे हैं।
0: इसी वजह से, बिकॉज वी ऑल इन स्पेशली इन बिग सिटीज दे लिव, यू नो वी लिव इन अपार्टमेंट्स, एंड यू नो मोस्टली चिल्ड्रन आर जस्ट कूप्ड अप अनलेस एंड अंटिल दे हैव अ गार्डन यू नो इन द सोसाइटी दैट दे कैन गो टू। बट एज यू मेंशनड खो खो, या हम लोग कभी भी जो है आई स्पाई नहीं बोलते थे, आपको याद होगा हम लोग हमेशा आई स्पाइस बोलते,
1: आई स्पाइस ये ढप मतलब ऐसे शब्द होते थे। चाहे yes. मैं सायरा, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरी जो माँ है वो मुझे खेल के बारे में बता रही थी कि पिट्ठू गर्म, जो शायद हमने भी नहीं खेला।
0: राइट,
1: मतलब ऐसे कई खेल हैं जो सब मिलकर खेलते थे और उसका मजा ही लुत्फ ही अलग होता था।
0: यस, इनफैक्ट बहुत से यू नो देयर आर सो मेनी गेम्स दैट डिफरेंट लोकैलिटीज के जो बच्चे होते वो खुद ही इजाद भी कर लेते थे हम लोग, यू नो, एंड दोस गेम्स वर ओनली नोन टू अस, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ you know playing games. It's in fact much more than just having a good time. Research shows that play helps everybody develop important life skills, especially among children.
1: और खेल खेल में बच्चे बातचीत करना, मिलजुल कर काम करना, समस्याओं को हल करना और दोस्ती करना सीखते हैं।
0: That's right, Priyanka. आपने हम लोग के बचपन की बात की. If you remember, those were the days when you know having inverters or backup power was very very rare. तो हम लोग गर्मी छुट्टियों में wait करते थे शाम को, काश आज light चली जाए और सब लोग मिलके मोहल्ले के बच्चे बाहर आके आइस पाय खेलेंगे।
1: मतलब यहाँ तो खेल होता था या संगीत होता था कि मतलब ये सब चीजें जोड़ती थी और आपको एक मतलब मनोरंजन के साथ साथ कुछ सिखाती भी थी।
0: यस, एंड जब बहुत व्हेन इट वाज वेरी वेरी हॉट आउटसाइड एंड एल्डर्स यूज्ड टू लिटरली स्कोल्ड अस दैट यू ऑल विल फॉल सिक, देन दे यू नो वो फिर दौड़ चलता था, कैरम पे कैरम चल रहे हैं या फिर बिजनेस खेला जा रहा है,
1: बिजनेस खेल तंबोला खेलते थे सब घर के लोग बैठकर। तो परिवार बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो समय कैसे बीता था, ना मोबाइल की जरूरत होती थी ना टीवी की जरूरत होती थी, और वक्त ऐसे ही बीत जाता था।
0: दैट्स वेरी ट्रू। सो इवन टुडे आई फील दैट यू नो देयर इज सो मच ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, बट नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग कैन रिप्लेस प्लेइंग। एंड इवन यू कैन से स्टडीज, आजकल तो यू नो आफ्टर NEP इट हैज बीन सेड दैट यू नो ये रिसर्च भी दिखाती है कि पढ़ाई भी अगर आप छोटे बच्चों को करें वो ओनली थ्रू प्ले ही समझते हैं।
1: जी हाँ,
0: a child only understands the language of play, so you want to convey anything to the child, convey it through playing.
1: और उसे यूनिवर्सल भाषा भी कहते हैं, द प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो अगर जितना आप खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे उतना जल्दी उनके जहन में जाएगा और याद रहेगा।
0: दैट्स ट्रू, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इज जस्ट नॉट अबाउट जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, इट ऑल्सो यू नो एनहांसेस सम लाइफ स्किल्स लाइक हाउ टू प्ले इन अ टीम एंड इवन हाउ टू प्रोबेबली यू नो मैनेज विद योर टीम प्लेयर्स। इट ऑल्सो बूस्ट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। थिंक अबाउट इट, दैट्स सम ऑफ द बेस्ट आइडियाज not when people are curious, when they are experimenting and exploring.
1: बिल्कुल. और अगर सुनने वालों से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि आपको कोई ऐसा खेल या गेम याद है जिससे आपको कुछ कीमती या कुछ ऐसा सिखाया हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो.
0: वेल, बहुत चीज़ें हो सकती हैं. आई एम श्योर दैट व्हेन वी यूज टू बिल्ड यू नो दोज टावर्स ऑफ ब्लॉक्स और व्हेन वी यूज टू जैसे आजकल जेंगा चल रहा है यू नो व्हेन यू बैलेंस ऑल दोज वुडन ब्लॉक्स. सो आई थिंक दिस टीचर्स सो मच ऑफ पेशेंस ऑल्सो, सो मच ऑफ फोकस एंड अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी यू कैन से.
1: खेल की यही खूबी है, ये बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में मदद करता है और खेल के जरिए वो दोस्त बनाना, समस्याओं को हल करना, डर पर काबू पाना और ज्यादा आत्मविश्वास हासिल करना सीखते हैं.
0: सो नाउ व्हेन वी यू नो वी कैन लीव आवर लिसनर्स विद दिस मैसेज दैट एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स यू कैन प्रोबब्ली डू इज टू हैव अनइंटरप्टेड प्ले विद योर चिल्ड्रन.
1: बिल्कुल. और जैसे खेल से ये भी सीखने को मिलता है, किसी ने चंद पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया कि जीत मिले तो मन हर्षाए, हार भी हमको बहुत कुछ सिखाए, गिरकर उठना, फिर से बढ़ना, खेल भावना से आगे लड़ना. तो खेल हमें सब कुछ सिखा देता है एज ए ह्यूमन, हमें जो चीज़ें चाहिए.
0: That's right. And now, of course, जब खेल की बात हो रही है और हेडलाइंस में हम लोग बता ही चुके हैं that FIFA is going to kick start from today.

0: easing immediate pressure. The lake's outlet rests on solid rock, limiting erosion risk. Wide valleys above Maratang, Jaitang, and Mago could also absorb any surge before it hits settlements. Officials warned geological changes could raise risk quickly. The report recommended detailed studies of glacier retreat, lake depth, water volume, inflow-outflow, and moraine dam stability. Tawang Deputy Commissioner and DDMA Chairman Namgyal Angmo urged residents to stay vigilant and follow advisories. SP Tasidarang advised people along the Mago Chu and Tawang Chu rivers, especially in low-lying areas, to keep emergency supplies ready. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
1: और अब बात खेल जगत की, बैडमिंटन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरी हरन की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
2: And if you talk about the business world, well, benchmark domestic equity indices finished their trading session today with moderate losses of 0.2%. Sensex slipped 151 points to close at 73,833, while Nifty dipped 53 points to settle at 23,162. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।

0: Bismil's friendship with fellow revolutionary Ashfaqullah Khan Warsi is legendary. The two, along with Roshan Singh, were executed on the 19th of December 1927 for their revolutionary activities. Ram Prasad Bismil's last message, which he wrote on the 16th of December 1927, was published in the magazine Kirti.
1: The time of execution is fixed for 6:30 a.m. on the 19th of December. Nothing to worry. I shall be reborn again and again due to God's grace, and my aim will be to ensure complete freedom for the world, that nature's gifts should be equally shared by all, and no one shall rule others. Everywhere, people should have their democratic institutions. My only request to countrymen is that if they had even an iota of sorrow at our deaths, then with whatever means, they must establish Hindu-Muslim unity. That was our last wish, and this only can be our memorial. Whatever I am saying, same is the opinion of Sri Ashfaqullah Khan Warsi. My request to the youth is that till many people get educated, don't pay attention to secret organizations. If they have the desire to serve the country, they should work openly. Just listening to empty rhetoric and imagining green pastures, they should not put their lives in trouble.
2: और अब हम स्मरण कर रहे हैं मराठी साहित्य और इतिहास जगत के कनमोल रत्न वासुदेव वामन शास्त्री खरे का। वर्ष 1859 में जन्मे खरे संवेदनशील कवि, प्रतिभाशाली नाटककार और प्रेरक जीवनी लेखक भी थे। उन्होंने अपने लेखन से इतिहास को जीवंत बनाया और समाज को अपनी विरासत से जोड़ने का कार्य किया। 11 जून 1924 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके शब्द और विचार आज भी ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाते हैं।
3: We're also remembering Chubby Biswas today on his death anniversary. A very, very legendary actor known for his performances in Tapan Sinha's Kabuliwala and Satyajit Ray's Jalsa Ghar, Devi and of course Kanchanjunga. He's best remembered for his numerous roles as the quintessential aristocratic patriarch, maybe because Priyanka, he himself belonged to a very aristocratic North Kolkata family. And before much ado, let's listen to a dialogue from one of his films.
4: তোমার নাম হিমু?
5: আগে হ্যাঁ, এখানে আমাকে সবাই ওই নামেই ডাকে।
4: কি পেশা তোমার? রোজগার টোজগার কিছু করো?
5: আগে রোজগার বলতে গোটা তুই টিউশনি, তবে পেশা একটা আছে বটে, হোমিওপ্যাথি।
4: তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি জানো?
5: আগে না,
4: আমার মেয়ে জ্যোতিকাকে পাটনা পৌঁছে দিতে হবে তোমার আজ সন্ধ্যার ট্রেনে।
5: বেশ,
4: শুনেছি তুমি খুব ডিপেন্ডেবল, ডিউটি সম্বন্ধে সজাগ।
5: আপনাদের সামান্য একটা উপকার করবো, তার জন্য মিছে মিছে এত প্রশংসা করছেন কেন?
4: উপকার কে চায় তোমার উপকার? আমি কখনো কারো উপকার করিনি, কারোর উপকারের ধারও ধারি না।
2: और अब आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद कनक रेले की आज जयंती है। उन्हें मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। कनक रेले मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक निदेशक और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्रधानाचार्य थी। उन्हें 1990 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अपने 8 दशक लंबे करियर में शास्त्रीय नृत्य को उन्होंने नई ऊंचाई तक पहुंचाया। डॉक्टर कनक रेले केरल के मशहूर मोहिनी अट्टम डांस में पारंगत थी। उन्हें मोहिनी अट्टम डांस से ही देश और दुनिया में पहचान मिली।
3: Today we are remembering another creative artist, a director of yesteryears, Shahid Latif, on his birth anniversary. And not just a very good director, but he also was a great writer. And he was the one who launched Devanand's career. And of course, we all know films like Ziddi, Arzu. They starred Dilip Kumar and Kamini Kaushal. And Latif shifted to Bombay, and we all know that he befriended Manto, the great writer, and also Ismat Chughtai, and eventually Shahid Latif. Latif and Ismat Chughtai married in the year 1941. Aur unki ek directed film thi, Priyanka, if you remember, Baharein Phir Bhi Aayengi. It had beautiful songs. The film was also very nice. Why not listen to its songs?

गीत था बहारें फिर आएंगी, और जिसके निर्माता थे गुरुदत्त। और आपको एक बात बताएं, उनकी अचानक मृत्यु के कारण इस फिल्म को दोबारा शूट किया गया, क्योंकि पहले गुरुदत्त इस फिल्म में हीरो की भूमिका अदा करने वाले थे और कुछ फिल्म शूट भी हो गए थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु के कारण धर्मेंद्र के साथ फिर से पूरी शूटिंग की गई और इस फिल्म में प्रसिद्ध गुरुदत्त दल ने आखिरी बार एक साथ काम किया। एक और गीत इसी फिल्म का, ये सुनते हैं।

और मोहम्मद रफी की आवाज में इस मंत्र मुग्ध करने वाले गीत के साथ आपको विदा कहते हैं। प्रियंका अरोड़ा और सायरा मुश्तबा को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस के खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु

और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त बहुत ही खूबसूरती के साथ इस शो को सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। इस फिल्म में हम इस शो में हम बात करते हैं 80 और 90 के दशक की फिल्मों की, उनसे जुड़ी कोई ऐसी बात जो हम सबको पता नहीं होती। तो बात है सन 1980 का, वो दौर था जब वो ख़त्म होते होते, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्मों का दौर था और थोड़ा सा वॉयलेंस भी देखने को मिलता था हमें फिल्मों में। तभी एक बहुत प्यारी सी मासूम फिल्म का निर्माण हुआ, बहुत प्यारी सी लव स्टोरी और हज़ारों परिवारों की नई रोमांटिक फैंटेसी बन गई। फिल्म थी मैंने प्यार किया और सुमन और प्रेम की कहानी जो थी उस दौर के युवाओं की अपनी कहानी बनी, उनको अपनी कहानी लगने लगी। और सच में इस फिल्म ने सलमान खान को ही सुपरहिट हीरो नहीं बनाया, उन्हीं का करियर लॉन्च नहीं किया, बल्कि राजश्री प्रोडक्शन को भी नई जिंदगी दी। और वो कैसेट का दौर था ये हम सब जानते हैं, और इस फिल्म के गीत हर इंसान की जबान पर होते थे, एक से बढ़कर एक जो है फिल्म के गीत थे। और हिंदुस्तान के हर घर में रोज इसी फिल्म के गीत सुने जाते थे। तो चलिए हम भी सुनते हैं लता जी की आवाज में राम लक्ष्मण का म्यूजिक, बहुत ही प्यारा सा ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया का।

0: जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइज।

0: प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

FM गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ और बात करते हैं अब एक ऐसी फिल्म की। एक बार जावेद साहब नासिर हुसैन से मिलने गए, वहाँ आमिर खान भी मौजूद थे। वहाँ उन्होंने नासिर साहब से पूछा, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तो उन्होंने बताया, ये मुझे फिल्म में असिस्ट करता है, मेरे भाई का बेटा है और बहुत अच्छा काम भी करता है। तो जावेद साहब बोले, इसे तो फिल्म का हीरो होना चाहिए। और वाकई में बात कुछ यूं लगी दिल पर और आमिर खान बन गए फिल्म कयामत से कयामत तक के हीरो। उनके ऑपोजिट में थी जूही चावला, बहुत ही उम्दा कलाकारी की दोनों ही फनकारों ने, और एक से बढ़कर एक गीत थे इस फिल्म के। चलिए हम भी सुनते हैं।

0: करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक और प्यारा सा तराना, फिल्म है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर दा और साथ में लता मंगेशकर जी की, संगीत एसटी बर्मन, गीतकार नीरज, गीत पहुंच गया आप तक। गीत के बाद ठीक 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार।

0: www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रवर्तन निदेशालयेन आंध्र प्रदेश राज्य मद्य पदार्थ निगम लिमिटेड इत्यस्य कथिते परिवहन प्रवंचना कांडे हैदराबादे पंच स्थलेषु सहसा अन्वेषणं कृतम्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अधिकारिणः कथयन्ति यत् आरोपिजनाः शासकीय कोषात् पंचनवत्यधिक कोटि रूप्यकाणां वित्तहरणं कृतवन्तः तथा च स्व सहयोगिनां कृते अवैध लाभाः अर्जिताः। भारतेन प्रतिरक्षण व्याप्तिं सुदृढं कर्तुं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य रक्षणार्थं च प्रयत्नान् समर्थयितुं मालदीव देशं प्रति 20,000 यावत् खसरा सूच्यौषधीनां प्रायः 3 टन चिकित्सा सामग्रीं च प्रेषितम्। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् एतत् सहयोगं द्वीपराष्ट्रे वर्धमानानां खसरा प्रकरणानां निवारणे साहाय्यं करिष्यति तथा च मालदीव्स सर्वकारस्य प्रतिक्रिया उपायान् सुदृढं करिष्यति इति। तस्य नेबरहुड फर्स्ट विजन महासागर इत्येतयोः अन्तर्गतं भारतं मालदीव्स देशेन सह संयुक्त प्राथमिकतासु निकटतया कार्यं कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अद्य राजस्थाने जैसलमेर जनपदे रामगढ़े 20 किलोवाट क्षमतायुतस्य एफएम प्रेषकस्य आभासीय उद्घाटनम् अकरोत्। जयपुरस्थे आकाशवाणी परिसरे समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटन कार्यमिदं सम्पन्नम्। अनेन सह राज्ये एफएम प्रेषकाणां संख्या विवर्ध्य 49 जाता। नूतनः प्रेषकः सीमावर्ति क्षेत्रेषु 80 किलोमीटर परिमिते क्षेत्र रेडियो प्रसारणस्य आवरणं प्रदास्यति। एतेन जनाः विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सभां सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमाक्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छ पर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारणसेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1,000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम् अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् 20%-30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादं केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तं यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीड़ा गृहे आरभ्यते। इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक ए.के. भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ गौरा धवन लाल.
0: Thank you, Amrish and AK. Once again, Thank welcome you. To the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end marginally down. Sensex slips 151 points. Nifty settles below 23,200. Asian stock markets end on mixed note. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट दिखाई दी. सेंसेक्स 151 अंक गिरा. निफ्टी 23,200 के नीचे बंद हुआ. एशिया के शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई.

0: और आज की पहली खबर।
1: और पहली खबर से पहले स्मॉल डिस्क्लेमर बिफोर वी गो फर्दर इनटू द प्रोग्राम लिसनर्स, वी'ड लाइक टू शेयर विद यू दैट द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी एडवाइजेस इट्स लिसनर्स टू डू देयर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी फर्दर एडवाइज ऑल लिसनर्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड रिलाई ऑन देयर ओन जजमेंट फॉर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। And now over to Ambrish.
0: देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज 0.2% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 151 अंक गिरकर 73,833 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 53 अंक गिरकर 23,162 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स में 0.8% और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.7% की गिरावट आई। इससे पहले कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण आज बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कारोबार के दौरान दोनों इंडेक्स ने धीरे धीरे अपनी गिरावट को कम किया और पॉजिटिव जोन में आ गए, लेकिन आखिरी घंटे में बिकवाली के दबाव के कारण बढ़त खत्म हो गई और वे वापस निगेटिव जोन में चले गए।
1: Benchmark domestic equity indices finished today's trading session with moderate losses of 0.2%. The Sensex slipped 151 points to close at 73,833, while the Nifty dipped 53 points to settle at 23,162. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index lost 0.8% and the Small-Cap 100 Index fell nearly 0.7%. Earlier, the market It's opened lower today in line with weak global cues. Both indices gradually paired their losses and moved into positive territory during the session, but selling pressure in the final hour erased gains, pushing them back into negative territory.
0: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस का शेयर 2.7%, HCL टेक का शेयर 2% और अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.9% गिरा। दूसरी ओर ICICI बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 1.9% की तेजी आई, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 1.7% और कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1.1% बढ़ा।
1: Among sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in negative territory. IT was the top laggard, declining 1.8%, followed by focused IT, which fell 1.6%, and industrials, which dropped 1.4%. On the gaining side, the private bank index rose 0.4%, the healthcare index advanced by 0.25%, and BankEx added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,807 companies declined, 1,384 advanced and 198 remained unchanged.
0: और विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 49 पैसे गिरकर 95 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। छह अन्य प्रमुख

0: डॉलरों के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 100.06 पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, शेयर बाजार की जो हालत हमने देखी, तो आपको क्या लगता है कि जो ग्लोबल लेवल पे जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो असर हमें अभी भी बाजार पे काफी दिखाई दे रहा है और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस?
1: पूरी तरह आपने एकदम सही कहा कि जो जो वैश्विक बाजार में जो हलचल मच रही है और वो वैश्विक परिस्थितियों के कारण और हर दिन कोई नई ना नई एक अनिश्चितता का जो आभास जो मिल रहा है, जैसे अब लग रहा है कि जो सीज फायर का जो ऐलान हुआ था वो सीज फायर भंग भी हो चुकी है। उसके साथ साथ आज का जो डेवलपमेंट जो था कि एक इंडियन जो एक मर्चेंट शिप जो था, वेसल जो था, उसमें भी थोड़ा बहुत क्षति पहुंचाई है, वहाँ से गुजर रही थी, उससे भी मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। पर आज के मार्केट की जो हाईलाइट जो है, मैं समझता हूँ कि वो वॉलेटिलिटी है। जो शुरुआती दौर में गिरावट थी, उसके बाद वैल्यू बाइंग से, क्योंकि अभी भी जो ये मार्केट है पूरी तरह डोमेस्टिक बाइंग के ऊपर निर्भरशील है। सो डोमेस्टिक बाइंग बढ़ जाती है जब ही जो मार्केट की जो वैल्यू जो है थोड़ा नीचे आती है, और उसको लगकर वो उसको ऊपर जाती है। पर ग्लोबल डेवलपमेंट्स का जो डेवलपमेंट जो आता है, उससे जैसे लास्ट अंतिम घंटे में जो फिर बिकवाली हुई, उसका कारण भी वही कि बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है। सो ये मार्केट में यही चल रहा है, यही दौर चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक ना कोई क्लैरिटी, एक निश्चयता आ जाए, साफ साफ मालूम हो जाए कि तेलों की उपलब्धि और तेलों के दाम में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता जब तक ना आ जाए, मैं समझता हूँ कि ये दौर चलता रहेगा। ये वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे, वैल्यू बाइंग, उसमें एक ही पॉजिटिव वो है कि जो डोमेस्टिक बायर जो है, अगर आप जनवरी से जून 10 तक की अगर आंकड़े देखें, तो उसमें भी आपको ये साफ नज़र आ रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो करीबन 3 या 4 बिलियन डॉलर वो पैसे वो बाहर ले गया है, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो करीबन 5 या 6 ऐसे लेन थिंग वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसके डोमेस्टिक का और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट कंपटीशन चल रहा है, और ये कारण यही है कि जो वैश्विक वातावरण जो है वो अभी भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है।
2: Take your question from the side of retail investors and small investors. I think a lot of advice is also being given that it's volatile. If you don't have, I think, the risk appetite for it, don't, because a lot of short-term and daily, as you said, profit booking is happening. Some people are still making money, and some people are sitting on losses. A lot of people are also sitting on cash, because there is this whole narrative that the market will fall, there'll be a right time to pick up stocks at good value. Do you see that bottom somewhere close? And I know no one can predict it, but the temptation that the moment the market falls and people say, okay, this is the time to purchase, and the next day again the market quickly recovers and you wonder, or falls a little more. So do you think that there is more bottoming out to happen for stocks to be actually a good value?
1: It's a very important question that you have asked, and this is an issue that needs to be really addressed in its totality. When I was responding to Amrish ji, I did not mention one more element of uncertainty. I mean, of course, there is a global uncertainty, West Asia conflict, US-Iran conflict going on. There is yet another equally important and powerful uncertainty factor, which is the AI sector. Now, what is happening globally is that all the global liquidity is being directed and flowing towards AI

0: investments in AI companies.
1: Okay.
0: They are almost sucking in all the money, the liquidity that is available in the market. Now, but in India, the AI play is not very strong. AI play in India is limited to maybe building of data centers, maybe some tech companies are trying to prepare themselves for the AI onslaught. So what the Indian stock market is also suffering from is a kind of a twin setback of one is the West Asian crisis and the other is the AI uncertainty, which is why even today's stock market you will see that how the IT stocks have taken a knock or two.
1: True.
0: So whereas if you look at the financial sector, they have done better. So because if you look at the fourth quarter results and the annual results that have come in, the banking sector has once again come out in flying colors. So the markets are reflecting the real strengths and weaknesses and factors that are contributing to the uncertainty. So to answer your question, has the markets bottomed out? No, I think that this question can be answered only when, I mean, answered with some clarity,
1: right.
0: Only when you know that the global situation on both AI and the crisis have reached a state of clarity that this is where the AI boom will take us and this is where the West Asian crisis will take us.
1: But nobody is really talking about the AI.
0: Nobody is talking about it. So therefore, I would say that the stock markets, instead of bottoming out, what you are going to see is the markets will go up and down depending on the desire and the appetite of the investors value buying.
2: भट्टाचार्य जी, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा. आप रूपी के जो वैल्यू है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि जो अभी 95 के ऊपर का जो लेवल चल रहा है तो ये यहीं पे 95-96 के बीच में ट्रैवल करता रहेगा या जिस तरह की अनिश्चितता है उसके बीच में जो ये इस तरह की बात हो रही है कि 100 तक जाएगा?
0: नो, मैं ये समझता हूँ कि रुपए को हमें दूसरी तरफ से देखना है. आपको ये देखना है कि दो तीन दिन पहले
2: जी
0: जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति का समीक्षा विवाद ऐलान हुआ, उसी दिन सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर एक ऐसे दो तीन कदम लिए जो कदम एक्चुअली इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है और डेट इन्वेस्टमेंट में आने की वो काफ़ी हम आशा कर सकते हैं
2: जी.
0: उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि जो FCNRB डिपॉजिट है वो करीबन $40 बिलियन आ जाएंगे. बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो डेट में जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा. और सबसे बड़ी बात जो ब्लूमबर्ग की जो एक ग्लोबल एडवांटेज इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स नहीं, ग्लोबल इंडेक्स, उसमें इंडियन डेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसमें शायद उनको अंतर्गत किया जा सके. अगर वो हो गया तो मैं समझता हूँ कि रुपए की जो ये जो अनिश्चितता जो है वो काफ़ी नियंत्रण में आ जाएगी
2: जी.
0: और ऑलरेडी आपने जो 95 रुपए की बात कही टू डॉलर, वो ऑलरेडी एक इम्प्रूव्ड फिगर है
2: जी.
0: वो एक समय तो 96-97 के करीब जा रहा था
2: जी.
0: अब मैं समझता हूँ कि शायद रुपए की जो एक तरफी दिशा जो है वो उसका रुख शायद बदल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा
2: जी. जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं. आज एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% बढ़ा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% चढ़ा और जापान का निकेई मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके विपरीत हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% से ज़्यादा गिरा और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 0.2% नीचे आ गया. प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी और फ्रांस के कैक दोनों में लगभग 0.9% की बढ़त रही, जबकि जर्मनी का डैक्स ज़्यादातर स्थिर रहा लेकिन अंत में उसमें थोड़ी सकारात्मकता दिखाई दी. भट्टाचार्य जी, अगर हम यूरोप के बाज़ारों की बात करें तो यूरोपीय

0: सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं वो उसके वजह से क्या आपको बाजारों पे असर दिखाई देता है?
1: देखिए, पहली बात तो ये है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जब कोई ऐसी डिसीशन लेता है जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ मनी जिसे कहते हैं वो बढ़ जाएगी, मैं समझता हूँ कि उसका जो प्रभाव जो है वो दूसरे और मार्केट में भी आएगा। देखिए, अब यूएस सेंट्रल बैंक जो है फेड रिजर्व, वो अगले हफ्ते उनकी मीटिंग है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, पर उनकी जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं अभी भी एनकरेजिंग हैं। एम्प्लॉयमेंट में अभी भी कोई ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव आया नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिसीशन फेड को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा, पर फेड को उतना नहीं इन्फ्लुएंस करेगा जिससे कि वो अपनी कोई रेट को बढ़ा दे इस वक्त, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जो नए फेड रिजर्व के चेयरमैन हैं वो यूएस डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट साहब के अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं, और उनको आकर एक पहली शुरुआती दौर में अगर वो एक काम ऐसा करें जो ट्रंप साहब के पसंद की नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार होगा। शायद सेकंड जो रिव्यू जो होगा उसमें शायद उसकी तय करेंगे। इसका इम्पैक्ट भारतीय मार्केट में थोड़ा नेगेटिव होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, क्योंकि अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, उसका इम्पैक्ट अगर दूसरे देशों में भी जाता है तो भारत से जो इन्वेस्टमेंट जो इमर्जिंग मार्केट की मनी जो आती है वो शायद डाइवर्ट होकर उस मार्केट में जा सके, उससे हमारे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम मतलब
0: थोड़ा असर उसका
1: आ सकता है।
2: We also take a look at the US markets. Wall Street ended lower yesterday as chipmaker stocks continued their recent slide, while renewed tensions between the United States and Iran heightened investor uncertainty. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index plunged 2%, the Dow Jones Industrial Average shed 1.9%, and the S&P 500 lost 1.6%. On the macroeconomic front, headline inflation accelerated to 4.2% year-on-year in May, up from 3.8%. In April. Meanwhile, core inflation edged up to 2.9% from 2.8% over the same period. AKU did speak about the new lead person for the Fed Reserve and not actually wanting to upset the apple cart. Do you think that so it's dictated more by politics, but what about the real situation in the US? Would that have an impact on the Fed Reserve decision?
1: Well, to some extent, certainly. I think the Fed Reserve will be extremely wary of the price situation there. Remember, the oil prices have been on the rise, and the U.S. government has not stepped in to sober the influence of the global oil prices. AI uncertainty is on the rise in the sense that what kind of, you know, every other day there is a new model that is available which is going to have an impact of investments, employment and prices.
2: So just to buttress that, AI stocks on the Nasdaq down almost 7% from their peak.
1: Absolutely. So the markets are still trying to assess that what kind of reordering of corporate balance sheets and corporate valuations will emerge once the AI boom settles down. And till that time, this uncertainty, this I would say almost call it tension in the market will prevail, and Nasdaq stock price that you just now mentioned of coming down by 7% from the peak is a reflection of that uncertainty. There's no doubt about it.
2: Right. And it's interesting, you know, that experts and like you are now going to start talking about it, because it's another, I wouldn't say narrative, but information that needs to go down to the retail investor, because, you know, a lot of finance is also jargon for the retail investor to actually comprehend, understand and build it into his or her portfolio. Take some time.
1: For retail investors, this is no time for experimentation. Okay. This is the time for staying on the sidelines and watching what is really happening around you.
2: All right. So the world's largest IPO listing is tomorrow. What is your view?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में

0: से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. India strongly condemned the recent attack on a Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, in which three internationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the US Charles de Fer.
1: We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost three Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region.
3: Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, expressed concern over recent incidents involving merchant vessels in the Persian Gulf region and reaffirmed its commitment to the safety and welfare of Indian seafarers. He further informed that today the bitumen tanker MT Jalveer, a Guinea-Bissau flagged vessel, was involved in a maritime security incident near Shinas port in Oman. The vessel had 20 Indian crew members on board. All of them are reported to be safe and evacuation operations are currently underway. Union Textiles Minister Giriraj Singh today said that India's textile market has grown from about 8.5 lakh crore rupees in 2014-15 to over 16 lakh crore rupees at present. Briefing media in New Delhi on the occasion of 12 years of achievements of the Modi government, Mr. Singh said that the textile sector is the largest employment generating industry in the country after agriculture. The minister highlighted that India's silk production has increased from 26,480 metric tons to 42,005 metric tons, while silk imports have declined by nearly 50%. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to France and Slovakia from 14th to 18th of this month to participate in the upcoming G7 summit. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said this will be a highly productive and wide-ranging visit. He added that the visit spans three destinations in France, Nice, Evian and Paris, and Slovakia. Mr. George said that the visit will provide an opportunity for Prime Minister to engage with world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as well as to the Global South. India has dispatched a consignment of 20,000 doses of measles vaccines and approximately 3 tons of medical supplies to support the government of Maldives in strengthening immunization coverage and safeguarding public health. The External Affairs Ministry said in a statement that this timely assistance will help address increasing cases of measles in Maldives and reinforce the response efforts of the government. UK Defence Secretary John Healey has resigned, accusing the government of being unwilling to commit the resources needed to safeguard the country. In his resignation letter to Prime Minister Keir Starmer, Mr. Healey said the Treasury Department had refused to provide the funding required under the government's defence investment plan, leaving him with no choice but to step down from the cabinet. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with moderate losses of 0.2%. Sensex slipped 151 points to close at 73,833, while the Nifty dipped 53 points to settle at 23,162. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र

0: मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आपका।
0: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
1: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
0: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन, ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है, कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
0: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
1: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। तो यही तो अपनापन है।
0: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम

0: किया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: तो ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं, तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी

0: हमारे काम आ रहा है, जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम

0: सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत पे खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहाँ अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है, तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या है?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ, और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरेवती चरेवती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 साल

0: में, चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और बोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी, उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था, जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा, पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है।

0: उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन ज़ी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिर

0: विविधता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसरों के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मंच के तहत राज्य अपना अनुभव, कार्य पद्धतियां और सामूहिक विचार साझा कर विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार इस महीने की 18 से 20 तारीख तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
2: इन शिविरों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के साथ संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। श्री सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए रिशु के साथ सौम्या शरण।
0: केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज एक बैठक में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
3: उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बैठक में अधिकारियों को मॉनसून से पहले सभी वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पूरी तरह कार्यशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में अधिकारियों को भूजल पुनर्भरण और जल संचयन के प्रयासों को और भी मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में वर्षा जल संचयन करने वाले सभी ढांचों की कुल क्षमता का पूरी तरह से आकलन करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: श्री संधू ने आज दिल्ली में लू से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का भी निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उन्होंने कूलिंग सेंटर्स की तैयारियों का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, विशेषकर अंतरराज्यीय बस अड्डा तथा मेट्रो स्टेशनों पर तैनात मोबाइल रिलीफ वैन के पूरी क्षमता

0: सतर्कता से काम करने और उनमें नागरिकों को जरूरी राहत और मदद देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए आज एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के प्रशासन और निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। श्री सूद ने बताया कि नीति नियम की प्रक्रिया के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सूद ने बताया कि राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर उसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके लिए एक बहुविषयक समिति का गठन किया जाएगा जो कोचिंग संस्थानों की शुल्क संरचना, विद्यार्थी सुरक्षा और कल्याण तथा अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था जैसे विषयों पर दिशा निर्देश तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि ये नियम दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा छात्र केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करेगा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग सेवाओं को बढ़ावा देगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत अपने कैंप कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से बातचीत की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कैंप में उन्होंने सभी लोगों की समस्याओं, सुझावों और जनहित से जुड़े विषयों को सुना। श्री सिंह ने नागरिक समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के साथ अपने आवास पर संवाद किया। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संवाद में जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा कर उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण, सुशासन और विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर आज राजौरी गार्डन विधानसभा में स्वच्छता अभियान चलाया। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता को भी जन जन से जोड़ा है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज रोहिणी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता और धूल की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री खिरवार ने कहा कि निगम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।
1: समन्वय परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक, आदिवासी और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। चयनित फेलोशिप और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकादमी की समन्वय परिषद ने वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए 106 युवा और कलाकारों का चयन किया है। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम का अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज भगोड़े वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के सहयोग से की गई। सीबीआई के अनुसार वेंकट गर्ग एक कुख्यात गैंगस्टर है और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज हत्या, रंगदारी, सुनियोजित अपराध तथा अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कई मामलों में वांछित था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

0: लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया और देश छोड़कर भाग गया। सीबीआई ने कहा कि हरियाणा पुलिस और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम जॉर्जिया गई, जहां आरोपी को औपचारिक रूप से पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबोलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया।
1: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंता जनक है। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेटेबोलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। देश आज महान क्रांतिकारी और काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिस्मिल का बलिदान और राष्ट्रभक्ति का संदेश हर पीढ़ी को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और आशीष सूद ने भी राम प्रसाद बिस्मिल को नमन किया। दिल्ली में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: Peace and stability in the region.
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल

क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई। इसमें सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। न्यायालय ने समाज में लड़कों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित लिंग चयनात्मक उपायों पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय की पीठ ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम व्यवस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज भगोड़े वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाया है। वेंकट गर्ग एक कुख्यात गैंगस्टर है और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज हत्या, रंगदारी, सुनियोजित अपराध तथा अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कई मामलों में वांछित था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं नूपुर, प्रोग्राम मधुरिमा लिए आज आपके साथ। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी, कह लीजिए छोटे से किस्से या वाकया से। सो साल था 1956। अनंत ठाकुर बतौर डायरेक्टर अपने करियर की चौथी फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार उस दौर के बड़े स्टार्स को साइन किया था। तो फिल्म में भारतीय फिल्मों की सबसे हिट जोड़ियों में से एक राज कपूर और नरगिस जी थे। अब इनके अलावा प्राण और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे। अब फिल्म के गीत लिखने की जो जिम्मेदारी थी वो थी हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी को दी गई। संगीत बनाने का जिम्मा उस दौर की कामयाब संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को मिला। तो जान गए होंगे कि फिल्म चोरी चोरी की बात हो रही है। शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन ने रसिक बलमा, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, पंछी बन उड़ती फिरूं, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, और ये रात भीगी भीगी जैसे अमर गाने इस फिल्म के लिए तैयार किए। अब दिलचस्प किस्से की शुरुआत तब हुई जब मुकेश जी ने जरूरत से ज्यादा व्यस्तता होने के कारण प्लेबैक सिंगिंग के लिए समय निकालने में असमर्थता जाहिर की। शंकर जयकिशन ने सो हमेशा की तरह चोरी चोरी के गानों में शास्त्रीयता का एक मजबूत पक्ष रखा था, और फीमेल सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर जी तो थी ही, लेकिन उनके साथ अब पुरुष आवाज किसकी होगी, इस बात पर विचार विमर्श चल रहा था। और आखिरकार शंकर जयकिशन ने फैसला किया कि वो इस फिल्म में मन्ना डे को राज कपूर साहब की आवाज बनाएंगे। अब मन्ना डे जी की आवाज को इससे पहले शंकर जयकिशन ने अपने शास्त्रीय गीतों के लिए इस्तेमाल किया ही था, लेकिन ये पहला मौका था जब राज कपूर के गानों के लिए मन्ना डे की आवाज को चुना गया। चलिए जी, एक मुसीबत हल हुई तो पूरी तरह से मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती है। अब जैसे ही फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी AVM प्रोडक्शंस को इस बदलाव का पता चलता है, वो गानों की रिकॉर्डिंग ही रोक देते हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक AV मैयप्पन जी बड़े तजुर्बेकार आदमी थे, उनकी बड़ी इज्जत थी, उन्होंने किसी बात के लिए ना कह दिया तो बस कह दिया, अब उन्हें मनाना बहुत मुश्किल काम था। आखिर में राज कपूर ने बड़ी मेहनत से उन्हें समझाया बुझाया, और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को राज कपूर की आवाज़ के तौर पर एक और गायक मिले, मन्ना डे। अब इस किस्से को सुनाने के बाद आपको वो गाना बताते हैं जिसके बोल थे ये रात भीगी भीगी। आज इतने दशकों बाद भी बेहद लोकप्रिय इस गाने को शंकर जयकिशन ने राग किरवानी में कंपोज किया था। मनादा की आवाज के साथ गाने की शुरुआत के बाद क्रॉस फेड करते हुए जब लता जी की आवाज आती है तो वाकई इस गीत की खूबसूरती और बढ़ जाती है। राग किरवानी उस दौर की फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित रागों में से एक राग है। दिलचस्प ये भी है कि यही वो फिल्म थी जब सिनेमा प्रेमियों ने राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी को हीरो हीरोइन के तौर पर आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा था। राग किरवानी में कंपोज किए गए हिंदी फिल्म गीतों की एक लंबी लिस्ट है, उसी लिस्ट में से कुछ गाने आज हम आपके लिए ले आए हैं मधुरिमा में। तो प्रोग्राम में रहिए साथ और सुनिए ये तमाम गीत जिनका संगीत राग किरवानी को आधार मानकर बनाया गया। फिलहाल पहुंच रहा है आप तक चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

एफएम गोल्ड पर मधुरिमा और राग किरवानी की बात। 1954 में आई फिल्म नागिन, गीत मेरा दिल ये पुकारे आजा। 79 की हिट फिल्म गोलमाल, गीत आने वाला पल जाने वाला है। 71 की लाल पत्थर, गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं। 62 की एक मुसाफिर एक हसीना, गीत मैं प्यार करा ही हूँ। और 1973 की अनामिका, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पर। ये तमाम गाने बेहद लोकप्रिय हुए और संगीत बनाया गया राग किरवानी को आधार मानकर। जो गीत आप पार्श में सुन रहे हैं, फिल्म राम तेरी गंगा मैली, एक राधा एक मीरा, लता जी की आवाज़, संगीतकार रविंद्र जैन ने कंपोज किया इस गीत के संगीत को और ताने में सारंगी का बहुत खूबसूरत प्रयोग हुआ है। छोटी छोटी ताने ली गई हैं, लता जी ने ली हैं और इस गाने को भी ये खूबसूरत रंग दे दी हैं। और संगीत बनाया गया राग किरवानी पर आधारित। छोटा सा अंश इस गीत का सुनते हैं और आगे बात करते हैं राग किरवानी।

गायन का समय मध्य रात्रि, रस यानी प्रकृति प्रेम रस, वादी स्वर पंचम संवादी स्वर षडज। किरवानी का एहसास कैसा होता है? किरवानी में अक्सर हल्की उदासी, गहराई, रोमांस साथ चलते हैं। रात में सुनने पर ना इसका असर और सुंदर लगता है, जैसे कोई धीमी याद, हल्की बारिश या खामोश बातचीत। राग किरवानी का रंग थोड़ा मधुर, विरहपूर्ण, रहस्यमयी और गहरा भावुक माना जाता है। फिल्म संगीत में इसका इस्तेमाल अक्सर रोमांटिक, दर्द भरे या आत्मीय गीतों में हुआ है। अगर आपको सॉफ्ट सोलफुल मेलोडीज पसंद है तो राग किरवानी सुनिए। खासतौर पर ये गीत मेरे सनम फिल्म से मोहम्मद रफी साहब की आवाज, संगीत बनाया गया अभिनय जी द्वारा, आधार बना राग किरवानी।

राग किरवानी के शास्त्रीय पक्ष की बात करें तो इस राग में यूं तो ख्याल भी गाया बजाया जाता है, लेकिन इस राग को सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक के लिए बहुत पसंद किया जाता है और यही वजह है किरवानी में एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने, गजलें और भजन कंपोज किए गए हैं। श्रृंगार, खासतौर पर वियोग श्रृंगार वाले गाने किरवानी में खूब खिलते हैं। किरवानी में गंधार और धैवत कोमल होते हैं और बाकी स्वर शुद्ध आरोह और अवरोह दोनों में सारे स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति कहलाती है संपूर्ण संपूर्ण। किरवानी को पीलू के काफी करीब माना जाता है। किरवानी एक भारतीय शास्त्रीय राग है जो विशेष रूप से वाद्य संगीत के लिए बेहद उपयुक्त है। इसकी जो धुनें होती है ना, इस पर जो आधारित धुनें बनाई जाती हैं वो अक्सर दिल को छू लेने वाली होती हैं। इस राग का भाव गंभीर, मधुर, हल्की विनय भावना और आत्मीयता लिए होता है। इससे शांत रात के माहौल में इसका असर बहुत मन को पसंद आता है, सुंदर लगता है और यही वजह है कि किरवानी पर आधारित कई फिल्मी गीत भी लेट नाइट लिसनिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे कि ये गीत जो पहुंच रहा है आप तक, फिल्म पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से, आवाजें हेमंत दा और लता मंगेशकर जी की। नींद ना मुझको आए दिल घबराए। प्रोग्राम का ये आखिरी गीत और इसके बाद आप सुनते रहिए FM गोल्ड, जहां आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। दीजिए इजाजत नूपुर को।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताज़ा अपडेट और हर मैदान की खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज। पहले मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की पुरुष जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। कहा, खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाती है। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम घोषित। यशवर्धन सिंह चौहान को पुरुष और भाविका अहिरे को महिला टीम की कमान सौंपी गई। और T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के साथ, जो कि आज शुरू होने जा रहा है। गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले लियोनल मेसी, महानतम खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और आखिरी विश्व कप के लिए अपने दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आज से 20 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित यह संस्करण इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 की जगह 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। और तमाम जानकारियों की इस कड़ी में आज हम उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक सबसे अधिक गोल दागे हैं। सुनिए विशेष की ये रिपोर्ट।
1: जर्मनी के स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2002 से 2014 के बीच 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए। 2002 और 2006 में क्लोज ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। साथ ही 2014 में अपनी टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो नजारियो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। द फिनोमिनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए। उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की। 2002 विश्व कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गर्ड मुलर ने वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 विश्व कप में 10 गोल, वहीं 1974 में 4 गोल दागकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई थी। तीसरे पायदान पर काबिज मुलर ने यह उपलब्धि केवल 13 मुकाबलों में हासिल की थी। फ्रांस के जस्टन फोंटेन ने 1958 विश्व कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है। जस्टन ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था। यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है। साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त चौथे पायदान पर हैं। मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं। कतर में खेला गया आखिरी विश्व कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पिछले फीफा विश्व कप के इस आखिरी विनिंग मोमेंट के साथ वापस से रिचार्ज होने को तैयार है फुटबॉल फैंस का पूरा मन। और इसी कड़ी में आज पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो आइए जानते हैं विश्व कप के इस पहले मुकाबले में किस टीम का पड़ला कितना भारी है।
2: तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब से कुछ घंटे बाद फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल के लिए भारत और दुनिया भर के फैंस का जोश हाई है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए सभी फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं। मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका महामुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। मैक्सिको सिटी के स्टाडियो एस्टेका स्टेडियम में इस मुकाबले की सीटी बजते ही फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में आमने सामने होने के 16 साल बाद मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत करने का मौका मिला है। मैक्सिको और साउथ अफ्रीका 5वीं बार विश्व कप में आमने सामने होंगे। मैक्सिको ने पिछले 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 1 मुकाबला जीता है जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है, जिससे मेजबान मैक्सिको का पलड़ा इस मुकाबले में भारी दिखाई देता है। मैक्सिको के एरिक लीरा सेंट्रल मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए ओस्विन अपोलिस अटैक का जिम्मा संभालेंगे। मैक्सिको अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने डिसिप्लिन के लिए विश्व फुटबॉल में जाना जाता है। ऐसे में दोनों ही टीम की नजरें विश्व कप का पहला मुकाबला जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने पर होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मैक्सिको होम एडवांटेज का फायदा उठाता है या दक्षिण अफ्रीका अपने बेहतर खेल से एक अलग पहचान बनाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आज रात 12 बजे से जोश, जज्बे और रोमांच के इस अनुभव के साथ शुरू होगा फीफा का महाकुंभ। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं एमआर अर्जुन और हरिहरन हमसा करुणन की पुरुष जोड़ी ने भी अंतिम 8 में जगह बना ली है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों पर ये रिपोर्ट।
3: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
4: आई वॉन माई सेकेंड राउंड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक यू नो ऑल द फैंस आउट देयर हु हैव बीन वेरी सपोर्टिव।
3: सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की ही ईशा रानी बरुआ को 22-20, 21-12 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चेन सू यू से होगा। वहीं तन्वी शर्मा ने भी हमवतन मालविका बंसोट को 21-13, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। 17 साल की तन्वी ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को हराया था। वहीं भारत की तानिया को पोर्न पावी चोचू वोंग से 12-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय पुरुष जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के माइकल ओवेन और डायलन सोएत चासा को 21-17, 21-7 से हराया। मिक्स डबल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली का अभियान अपने अपने मैचों में हार के साथ समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब बात करते हैं एक और खेल आयोजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए देश के लिए ओलंपिक से बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता उसकी बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन हर दिन बेहतर होते जा रहा है।
5: और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनके परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है।
0: तो रिफॉर्म भारत का कन्विक्शन है और इसकी साफ झलक देखने को मिलती है जब युवा खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा लगाए मैदान पर उतरते हैं और रोज नए कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नजर आते हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। ये दौरा 4 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पुरुष की अंडर 19 टीम चुनी है, जिसमें 3 एक दिवसीय मैच और 2 मल्टी डे मैच खेले जाने हैं। यशवर्धन सिंह चौहान दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी एक दिवसीय टीम में विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मुकाबलों की महिला एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भी भारतीय महिला अंडर 19 टीम का कार्यक्रम का आज ऐलान कर दिया गया। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान भाविका अहिरे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि महाक नरवासे दोनों प्रारूपों में टीम की उपकप्तान होंगी। श्रृंखला की शुरुआत 22 जून को चेन्नई में पहले T20 मुकाबले के साथ होगी। और जब T20 की बात छिड़ी है तो बात T20 क्रिकेट विश्व कप की भी होगी, जो कि कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और भारत की नजर 17 सालों के इतिहास में पहली बार यह खिताब जीतने पर होगी। आज हम बात करेंगे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ियों पर।
3: भारतीय टीम के पास विश्व कप में शुरुआत से लेकर अंत तक और अनुभव से लेकर युवा तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बल्ले से किसी भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। हरमनप्रीत की आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी। जब भी ये जोड़ी शुरुआत से अपना स्वाभाविक खेल दिखाती है तो भारत के लिए एक बड़े स्कोर की राह पावर प्ले में ही आसान बन जाती है। उपकप्तान मंधाना तेज गति और आक्रामक शैली से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने करीब 30 के औसत से 4,293 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं युवा शेफाली भी पावर हिटर मानी जाती हैं और हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ऊर्जा से भरपूर शेफाली ने अपने T20 करियर में 28 की औसत से 2,687 रन बनाए हैं। शेफाली किन इरादों से मैदान पर उतरना चाहती हैं, ये खुद उनसे सुनते हैं।
6: जब भी मैं कोई T20 वर्ल्ड कप खेलती हूँ तो मुझे हमेशा 2020 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ जाती है। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, मुझे वो फाइनल याद आता है कि मुझे उस फाइनल का बदला जरूर लेना 2020 वर्ल्ड कप का, एंड होपफुली दिस टाइम वी बीट देम।
3: अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर है। इस मैच विनर खिलाड़ी ने अपने बल्ले से भारत के लिए कई मुकाबले पलटे हैं। हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगभग 30 की औसत से 3,991 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। टीम की बल्लेबाजी को लेकर रणनीति पर खुद कप्तान ने क्या कहा, वो सुनते हैं।
7: T20 पावर प्ले के जो फर्स्ट 6 ओवर है, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, यू हैव टू टारगेट रन्स इन द पावर प्ले, एंड इफ यू आर बॉलिंग, यू नो, वी हैव टू गेट कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले। वंस द पावर प्ले इज सेट, उसके बाद आपका गेम चलता है। तो आई थिंक डेफिनेटली वी वांट टू रियली वर्क हार्ड, लाइक हाउ वी हैव टू गो अबाउट द पावर प्ले, एंड सेकंडली यू नो मिडिल ओवर आल्सो प्ले वेरी बिग रोल।
3: जेमिमा रॉड्रिग्स भी मध्य क्रम की एक मजबूत कड़ी है। तकनीकी रूप से दक्ष और प्रेशर में स्थिरता रखने की कला इस खिलाड़ी को बेहद खास बनाती है। 2025 में एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने इस खिलाड़ी की ट्रॉफी जीतने की संभावनाएं और बढ़ा दी हैं।
8: Now you've tasted what it feels like to lift one World Cup. It makes you want one more and then one more and then one more. So I think the team is even more motivated and even more eager. And more than that, we saw the kind of impact it had for women's cricket in India. We just want to continue that legacy.
3: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष से भी टीम को एक अच्छे फिनिशर का रोल अदा करने की उम्मीद होगी। ऋचा तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकती हैं और बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखती हैं। वे हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में भी नजर आईं। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम को भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा और यस्तिका भाटिया शर्मा से भी भरपूर उम्मीद होगी, जो टीम को एक ऐसे भरोसे के साथ साथ बल्लेबाजी में गहराई देने का भी काम करेंगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारतीय टीम किन तेवरों के साथ 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी, ये इस रिपोर्ट में साफ नजर आया। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों की, जो कि 20 जून को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस समारोह में 10 वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को और कोचों को उनके जीवन भर के योगदान और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और अपने सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
9: The topic for the Governing Council meeting.
10: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
11: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है।

0: इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है, उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी, कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की, जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते हैं, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाता है, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने
1: की। जी,
2: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए, जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
1: जी जी,
2: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है। एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गाँव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कॉम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया और

0: मंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो, वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
0: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
2: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
0: जी,
2: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: महिलाओं को आरक्षण,

0: तीन तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा
1: जी।
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपिया जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीर नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो तीन तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी स्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे।

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीकों की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं।
1: टुडे वी आर विटनेसिंग अ हिस्टोरिक मोमेंट। दिस विल एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। दिस पैटर्न ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज फॉर मिनरल माइनिंग एज वेल। बोथ स्टेट्स डिसाइडेड नॉट टू लेट कंसर्न्स हिंडर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियाज ऑयल रिसोर्सेज, एग्रीइंग इंस्टेड टू अ 50-50 शेयरिंग अरेंजमेंट। दिस इज नेशनल वेल्थ एंड आई बिलीव दिस सेंटीमेंट इज क्रूशियल।
0: और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: India strongly condemned the recent attack on a Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, in which three Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the US Chargé d'Affaires. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to France and Slovakia from the 14th to the 18th of this month to participate in the upcoming G7 summit. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, said this will be highly productive and wide-ranging visit. He added that the visit spans three destinations in France: Nice, Evian and Paris, and Slovakia. This will be India's 13th participation at the G7 summit and Prime Minister Modi's 7th consecutive participation at the G7 summit. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। भारत ने ओमान तट पर तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरान द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस उद्योग पर नियंत्रण करने की धमकी दी। रक्षा निधि के मुद्दे पर जॉन हीली ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और फीफा विश्व कप 2026 आज रात मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो एस्टेका में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। हाल ही में भारत के कई देशों के साथ संपन्न व्यापार समझौतों पर प्रधानमंत्री ने राज्यों को युवाओं और लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

0: भारत को सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्री जॉर्ज ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: Participation at the summit.
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर बड़े हमले करने और उसके तेल तथा गैस उद्योग के प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण लेने की धमकी दी है, जिससे पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, साथ ही खार्ग द्वीप सहित उसके तेल गैस बाजारों पर पूरा नियंत्रण कर लेगा। ट्रंप ने इस कदम की तुलना वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमरीकी नियंत्रण से की। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन हमले कर रहे हैं। बताया गया है कि ईरान में अमरीका के हमले पहले से अधिक तेज रहे। इस बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र अफगान सहायता मिशन UNAMA ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद तनाव कम करने और स्थायी युद्ध विराम की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इन हमलों में 13 नागरिकों की मौत हुई। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में UNAMA ने कहा कि 9 और 10 जून की रात खोस्त, कुनार और पक्तिका में हुए हवाई हमलों में 13 नागरिक मारे गए और 10 घायल हो गए। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। UNAMA ने सभी पक्षों से तनाव कम करने, स्थायी युद्ध विराम स्थापित करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीमा चौकियां खोलने की अपील की ताकि मानवीय सहायता और बातचीत संभव हो सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सरकार पर अनिच्छा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में जॉन हीली ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने सरकार की रक्षा निवेश योजना के तहत आवश्यक धनराशि देने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण उनके पास मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे पहले ब्रिटेन के रक्षा और वित्त मंत्रालय सैन्य खर्च में वृद्धि की बढ़ती मांगों को पूरा करने के तरीकों पर महीनों से बातचीत कर रहे थे, जिसके चलते रक्षा निवेश योजना के प्रकाशन में पिछले साल से देरी हो रही है। ये देरी ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष चरम पर है और अमरीका यूरोप की सुरक्षा से अपना ध्यान हटा रहा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा।

0: इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यूरोप स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने गर्मी से स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजना के अद्यतन दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो विश्वभर की सरकारों को गर्मी से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। भारत ने ओमान तट पर तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। रक्षा निधि के मुद्दे पर जॉन हीली ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और फीफा विश्व कप 2026 आज रात मेक्सिको सिटी के स्टाडियो एस्टेका में शुरू होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's growth story continues to inspire the world as major economies are facing uncertainty. New Delhi strongly condemns US strikes on oil ship which killed 3 Indian sailors off the coast of Oman. Summons US Charged Affairs to lodge protest. Tensions in West Asia escalates as Iran announces closure of Strait of Hormuz. US President Donald Trump threatens to take control of Iran's oil and gas industry. John Healy resigns as UK Defence Secretary over defence funding issue. And in football, FIFA World Cup 2026 to kick off at Estadio Azteca in Mexico City tonight. Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly the renewable energy sector. India strongly condemned the recent attack on a Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, in which 3 Indian nationals lost their lives. Addressing inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the US Charged Affairs.
3: We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome. These attacks must cease and end. And we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region.
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to France and Slovakia from 14th to 18th of this month to participate in the upcoming G7 summit. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said the visit spans 3 destinations in France, Nice, Evian and Paris and Slovakia. He added that at the invitation of President of France, Emmanuel Macron, Prime Minister Modi will be travelling to Evian to participate in the 52nd G7 summit to be held from 15th to 17th June. India has been invited as a partner country.
4: The visit will provide an opportunity for the Prime Minister to engage with world leaders present at the G Summit on issues of importance to India as well as to the global

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, रात की इस खूबसूरत चादर में चांद और तारों की हल्की सी रोशनी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर शमीम लेकर आया हूं एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत जल्दी नहीं करती बल्कि इंतजार करती है। ये वो दौर है जब ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन इंतजार हुआ करता था, जब एक खत में छिपी खुशबू महीनों साथ रहती थी, जब किसी का नाम डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा जाता था और उसे दुनिया से छुपाया जाता था। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां मोहब्बत आज भी धीरे धीरे चलती है बिल्कुल पुराने गीतों की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो शायद आपको किसी खास की याद दिला दे, बिल्कुल इस गीत की तरह।

पहली मोहब्बत अजीब होती है ना, ना वो पूरी तरीके से समझ में आती है ना पूरी तरीके से भुलाई जाती है। किसी की एक झलक और बस दिल को लगने लगता है कि शायद यही कहानी है। पुराने जमाने का प्यार बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, क्योंकि लोग जल्दी इजहार नहीं करते थे, वो छुपकर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बस वही मोहब्बत थी। मुझे एक शेर याद आता है कि मोहब्बत में जरा सी सादगी रखनी जरूरी थी, वो दिल के पास रहते थे खबर होने से पहले। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें पहली मोहब्बत की हल्की सी मिठास है।

दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब खत पहुंचने का इंतजार होता था। डाकिया आते ही दिल धड़क उठता था। कभी कभी सिर्फ दो लाइनें लिखी होती थी उस खत में, उम्मीद है तुम ठीक हो गए। लेकिन उन दो लाइनों में पूरा प्यार छिपा होता था। आपको पता है कि लोग इत्र लगाकर खत भेजते थे ताकि खुशबू में भी मोहब्बत पहुंच सके। आज सब कुछ तेज हो गया है, लेकिन शायद वो इंतजार वाला प्यार

कहीं पीछे छूट गया है। वो चिट्ठियों का दौर भी क्या खूब हुआ करता था, हर लफ्ज में किसी का इंतजार लिखा होता था। और अब एक ऐसा गीत जो आपको शायद उन पुरानी यादों में कहीं वापस ले जाए।

सच्चा प्यार शायद जल्दी नहीं मिलता, और जो मिल जाए वो हमेशा साथ रहे ये भी जरूरी नहीं। पुराने लोग कहा करते थे कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कई बार वक्त भी हार जाता है। इंतजार मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, कभी स्टेशन पर, कभी किसी खिड़की के पास, तो कभी किसी की आंखों में, बस एक उम्मीद कि वो आएगा, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, हर प्यार मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ लोग सिर्फ कहानी बनकर रह जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है पता है आपको, कि अधूरी मोहब्बत सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ रिश्ते पुरानी किताबों जैसे होते हैं, पूरा ना भी पढ़ो फिर भी याद रहते हैं। तो दोस्तों, अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो शायद आपके दिल को हल्का सा कर दे।

दोस्तों, आज की रात मोहब्बत की उन पुरानी गलियों में चलते चलते वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अगर आपके दिल में भी कोई नाम आज अचानक मुस्कुरा उठा हो तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग याद बनकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि इश्क वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, इश्क वो है जो किसी एक के बाद फिर ना हो। आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ। तब तक ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मपत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। तो यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
2: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
2: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा।
2: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
2: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
2: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को

0: ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं।
1: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
0: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा,
1: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
0: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
0: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
1: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
0: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
1: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
0: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
0: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
0: चिवड़ा जी, आप तो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
1: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
0: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस

0: प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
1: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
2: अच्छा,
1: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
0: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
1: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे।
0: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
1: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
0: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे, एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
0: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
1: हमने अल नैनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
0: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
1: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
0: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
1: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
0: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेती चरैवेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी

0: लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ AR/VR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे, जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर, जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे, उस और हम बहुत

0: अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: बतिया मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर।
1: दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में ये ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल बदलाव श्रेणी में पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक दिया गया है। ये सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले की कड़ेपुर ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत सेवा वितरण के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। अगले महीने की 1 और 2 तारीख को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29

किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। रेगिस्तानों में उगते हैं अनबोए कांटों के जंगल, भीतर एक नदी होगी तो कल कल होगी हलचल। जो प्यारे सदियों के बंधक, अब उनको मजबूर न रखना। साथ किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। तो बात बस इतनी सी है कि किसी और के प्यार और उसकी चाहत में खो जाना तब तक ठीक है जब तक आपकी खुद की पहचान न खोने लग जाए। और यकीन मानिए, जो आपको खुद से दूर कर दे वो कभी आपका था ही नहीं। लेकिन हम यानी एफएम गोल्ड हर पहर, चाहे दिन हो या रात, हर पल है आपके साथ। और हमारा ये साथ हमेशा यूं ही रहे बरकरार, इसी ख्वाहिश के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपको नमस्कार।

यहाँ हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा, इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा, जमीन से आसमां तलक हर जगह गुणगान है तेरा। ये दुनिया चल रही है अब तलक मेरी जान, ये एहसान है तेरा, और तेरे होने से ही तो ये है कुदरत, तो इसकी शान रखा कर, बहलाने वालों को तू ना कहने का ईमान रखा कर। सही है कौन गलत जरा ये पहचान भी रखा कर, और आखिर में बस एक गुजारिश है कि तू अपना ध्यान रखा कर।

कभी कभी सिर्फ एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। वो आपको दिखाता है आपकी अच्छाइयां और आपकी गलतियां भी, दोनों को बिना किसी मिलावट के। और आपकी मुलाकात करवाता है वो आपके अंदर के उस इंसान से जिससे तो आप कभी मिले ही नहीं थे। तो जनाब, जिंदगी में कभी कहीं भी कोई ऐसा मिल जाए ना, तो उसे जाने मत देना, क्योंकि उसे आपके लिए आपने नहीं चुना है, बल्कि वो तो एक तोहफा है जो शायद आपकी तारीफ में उस ऊपर वाले ने भेजा है।

देखिए, हर रिश्ते में बहस होती है, गलत फहमियां भी होती हैं, कभी कभी मन भर भी जाता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कभी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और जिसे परफेक्ट होना चाहिए वो है उस रिश्ते को निभाने का इरादा।

मैं कभी कभी सोचती हूँ उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच। हम साथ होते तो कितनी बातें करते, है ना? पता है मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं पाती। लोग मिलते हैं मुझे, पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती। सुनो, तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ।

कल देर तक सोएंगे, ये सोचकर पूरे सप्ताह की थकान उतर जाती है ना? आपके साथ भी होता है ऐसा? पर अफसोस, जिस दिन सोने की आजादी हो उस दिन, खासकर उस दिन, ढंग से नींद कहाँ आती है।

उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा, उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा जिससे हमें मोहब्बत है। तो कहना है मुझे तुमसे कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तुम्हारी आंखें।

चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। और पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें।

तो रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब तो बता मनाने की। हम खुद को गिरवी रख देंगे, तू कीमत तो बता मुस्कुराने की।

आंखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजा कर बैठ गई, और कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फौरन उस पर एक तितली आकर बैठ गई।

उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे हम मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल के पहले सफ में खड़े मिलेंगे। और अब हम मिलेंगे ठीक 1:10 पर। उससे पहले आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको 1 गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19

मैंने चांद पर कुछ लिखा है, तुम चुपके से पढ़ लेना। तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगी। तुम शाम को याद करना, मैं रात सपने में जरूर आऊंगी। और इन दिनों अपनी ही हरकतों पर हंसी आती है मुझे, बस एक यही तो बहाना है जिस पे हंसी आती है मुझे। और तुम दूर हो या पास, ये बात कोई मायने नहीं रखती। मैं देख चुकी हूं खुद को तुम्हारी आंखों में, अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखती। और इस बात के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपका स्वागत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 1:11 और 58 सेकेंड्स और आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और यहाँ बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक शेर और सुनते जाइए कि उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा। उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर हमें आधा लगा।

सच है ना कि जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता, एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है। और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही तो है मेरी ख्वाहिश।

सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो। कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजरों से बतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, क्या है ये इश्क? सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें और तड़पती छतियां।

सच ही तो है, ये रात, ये मौसम, सब कुछ बहुत खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा हो जाता है जब महबूब का साथ मिल जाता है। और यही जज्बात बशीर बद्र साहब क्या खूब बयां करते हैं कि रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, ये रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, और मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए।

कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो हम करते तो किसी और से हैं, लेकिन हकीकत में वो बात हम खुद से कह रहे होते हैं। अब जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही बात कहता है कि मैंने कब चाहा था कि मुझे चांद सी महबूबा मिले, पर सच में जैसी मैंने चाही थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। और ये खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, और बेहद सादगी और मासूमियत के साथ गाया है मुकेश जी ने।

जिंदगी आखिर है क्या? एक मुकम्मल इश्क की तलाश ही तो है। तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क है, जान इश्क है और ईमान।

की जो पूछो तो ईमान इश्क है। साहिर लुधियानवी साहब के ये खूबसूरत बोल। आइए सुनते हैं साल 1960 में आई फिल्म बरसात की रात से एक और बेहतरीन गाना और संगीत है रोशन साहब का।

ना मजबूर न कर के बातें बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं।

ये आवाज आखिर होती क्या है? वो जो किसी एक से किसी दूसरे तक पहुंचती है, तो वो आवाज तो कुछ भी हो सकती है। वो किसी की लिखाई में हो सकती है, वो किसी की बात में हो सकती है, या फिर किसी एहसास में भी तो हो सकती है, या फिर किसी के जज्बात, वो भी तो उसकी आवाज ही हो सकते हैं। गुलजार साहब ने ठीक इसी आवाज का जिक्र इस गाने में किया है दोस्तों, जो अब आप सुनने वाले हैं, और बखूबी उस आवाज को हम सब तक पहुंचाया है लता जी ने। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत इतना नाजुक एहसास है कि जिसमें इजाजत का शामिल होना बेहद जरूरी हो जाता है। हम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे पर हक होता है, मगर उस हक को जता देने से अक्सर सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर हम अगर याद रखें कि इस हक को कमाया कैसे जाए, तो यकीनन रिश्ता बेहद खूबसूरत और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे इस गीत में हसरत जयपुरी साहब बोल रहे हैं। फिल्म जंगली का ये बेहद खूबसूरत गीत जो अब आप सुनने वाले हैं, इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का और रफी साहब की आवाज वाकई सब कुछ कह जाती है।

इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? ये जानने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जिसको खोने का सबसे ज्यादा डर हो, बस वही तो है वो। सब कुछ अच्छा है, वो साथ भी है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर है कि कहीं वो आंखों से ओझल हो गया तो। इन्हीं जज्बात को सुरों में बांधे कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे फिल्म असली नकली से। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, कानों में मिसरी खोलती मीठी आवाज लता जी की।

ये रात आती है तो आसमां सज जाता है, तारों की महफिल में ये दिल बहल जाता है। दिन की सारी थकान मिट जाती है ऐसे जैसे कोई लोरी गाकर सुला जाता है। तो चलो अब आंखों में कुछ नए ख्वाब सजा लें, इस हसीन रात को गले से लगा लें। कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है, कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है हमें मिलकर। आज की रात सब गिले शिकवे भुला दें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास का

0: कथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के सिलसिले में हरियाणा के विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और 2 निजी स्कूलों के खातों से 645 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रविवार तक 4 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by RS Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when major When many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues

वहां चांद रूठा बैठा है। मैंने तुझे मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। तेरे जैसी महक यहां किसी फूल में नहीं। यकीन कर मेरा, मैंने हर बाग देखा है। जी हाँ, चांद अपने पूरे शबाब पर है और आप हैं मेरे यानी नाज के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम चल रहा है रात सुरमई। करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे जो है फिल्म अनाड़ी से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश जी की, संगीत शंकर जयकिशन का और बोल हसरत जयपुरी साहब के।

बात ऐसी है कि मुझे चांद देखना पसंद है और उसे चांद सा दिखना पसंद है। वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पे छोड़ देती है। मुस्कुराते ही समाज के सारे बंधन तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना सवरना, बदल न जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूं कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती। ये वो हाँ नहीं बेफिजूल से सवालों में नहीं उलझती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, तो एक दफा बस अपने उलझे बाल सुलझा ले तो। ये जमाना अपना रुख न बदल दे, हर कोई उसके साथ न चल दे, ये हवाएं रुक न जाएं कहीं उसे देखने को, मैंने जब से देखा है उसे, मैं हूं बस वहीं, बस वहीं।

मरीज़े मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफ़ी है। मरीज़े मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफ़ी है। हर एक दवा से बेहतर निगाहे यार काफ़ी है।

पत्थर है तेरे हाथ या कोई फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मसाफत की धूल है। तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू न कर, तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। लफ्जों की आबरू को यूं गवाओ ना अदीम, जो मानता नहीं उसे कहना फिजूल है।

बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं। बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में, मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी, जाग किस लिए रहे हो और किस लिए सोए नहीं।

तो भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना।

हिज्र में एक रात ऐसे टाल देती हूँ, हिज्र में मैं एक रात ऐसे टाल देती हूँ, मैं खुद को जैसे सदमे में डाल देती हूँ। क्या तुम्हें सच में लौट के नहीं आना? चलो मैं तुम्हें एक और साल देती हूँ।

मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाते हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगता है। कोई भी रास्ता जो देर तक सीधा चला जाए, तुम्हें लगता है ये भी

न पहुंचेगा कहीं, या फिर बंद हो जाएगा आखिर में। तो यही अच्छा है कि कोई मोड़ मुड़ जाए और फिर मिल जाए शायद कहीं।

तुमको पाकर जो मिली उस मोहब्बत का क्या करूं, दिल न फट जाए इतनी खुशी का क्या करूं। मैं न कहती थी कि मैं तरसी हुई हूं प्यार की, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है, मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। ये जो तुमसे हो गई उस आखिरी का क्या करूं।

चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना यही तो जिंदगी है। गम में भी खुद को संभाले रखना यही तो बंदगी है। क्या रखा है रोकर इस दुनिया को दिखाने में, मुस्कुराकर सब भूल जाना ही सबसे बड़ी दिल लगी है। और तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तो बस तुम्हारे मुस्कुराने की आस रखती हूं। रूठना मत कभी जिंदगी के इन थपेड़ों से तुम, तुम्हारी इसी मुस्कान में तो मैं अपनी कायनात देखती हूं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

0: बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित द्वितीय फार्मा शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत वर्ष 2047 तक जीवित जीवों से प्राप्त होने वाले सामग्री से बनाई जाने वाली 100 बायोलॉजिक्स आरंभ करने की योजना है, जो विकसित भारत और स्वस्थ भारत के दृष्टि योजना में योगदान देंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the center and states becomes even greater. The Prime Minister

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

रात की खामोशी में जब प्यार की सरगम बजती है, तब दिल अपने प्यार के नाम की धड़कनों से महफिल सजा लेता है। मोहब्बत का सबसे सुंदर एहसास वही है जिसमें अपना कोई हर पल दिल के करीब महसूस हो।

प्यार की मीठी शरारतें और यादों की हल्की सी आहट रात को और भी हसीन बना देती है। कभी एक मुस्कान तो कभी एक याद दिल को बेकरार कर जाती है।

सच्चा प्यार किसी तुलना का मोहताज नहीं होता, वह अपने विश्वास और समर्पण से सबसे खास बन जाता है। जिस रिश्ते में अपनापन, वादा, प्यार हो, वह हर खुशी से बढ़कर होता है।

कभी कभी दिल की अनकही बातें ही सबसे गहरी मोहब्बत का एहसास कराती हैं। रात की तन्हाई में यादें वही सवाल पूछती हैं जिनका जवाब सिर्फ दिल जानता है।

प्यार में किए गए सच्चे वादे रिश्तों को उम्र भर की मिठास दे जाते हैं। जो साथ निभाने का वादा करते हैं वे दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं।

दुनिया में अगर कोई एहसास सबसे पुराना और सबसे नया है तो वो है प्यार ही। मोहब्बत हर दौर में दिलों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में ही दिल पर अपना नाम लिख जाती हैं। रात की चांदनी में पहली मोहब्बत की यादें आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहली बार लगी थीं।

और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। और आप कहीं मत जाइएगा, जी हाँ 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें

0: राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाहों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने हितधारकों से कहा है कि वे भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तुरंत नौवहन महानिदेशालय को दें, ताकि तत्काल हस्तक्षेप और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और चुनाव अधिकारी ने उन्हें औपचारिक रूप से निर्विरोध विजेता घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद लिशेम्बा संजावोबा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Said Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media, after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all aspects of life including education, health and employment.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की चुपके चुपके फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार अनंत बख्शी और संगीतकार

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनता अगला गीत फिल्म संसार से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म अनुराग से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म छैला बापू से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सफर से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार इंदीवर।

और कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ भी रहा है। तो अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिमान से, लता मंगेशकर, क्षमा कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन, गीतकार मजहू सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सरगम से मोहम्मद रवि और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं जल्द हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलेन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कल औपचारिक रूप से विजेता घोषित किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi, he emphasised the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and state becomes even greater. This year's theme was Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman participated in the virtual meeting on Global Convergence for Growth Summit from New Delhi yesterday. Ministry of Finance, in a social media post, said that the summit was held to bring together leaders of advanced and emerging economies to discuss ways of supporting a balanced growth anchored in an efficient global framework. French President Emmanuel Macron presided over the summit. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. The Ministry of Panchayati Raj has said that four Panchayati Raj related initiatives have been selected for the National Awards for E-Governance 2026. The Ministry said that it highlights the growing role of Gram Panchayat in advancing digital governance and

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ। भजन है फिल्म भक्ति में शक्ति से, मोहम्मद रफी, दिलराज कौर और ओमी और उनके साथियों की आवाज़ में।

हे प्रभु, आपकी कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब विश्वास ईश्वर पर हो तो हर कठिन राह भी सरल और प्रकाशमय बन जाती है।